0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिए गए निर्णय और कार्रवाई सदियों तक देश के भविष्य की आधारशिला रहेंगी।
1: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले 1000 वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे। सरकार के 12 वर्ष के सेवा कार्यों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग संविधान की बात उठाते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में संविधान का नाम लेने पर ही गोली तक मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहत उपायों से परिवारों की कर मुक्त आय बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर विनोद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया ज्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप 1 के मुकाबले में फ्रांस और इराक के बीच मैच चल रहा है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान LNG विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां, विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
1: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी कि हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूति, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: मैं आपका काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सी के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल है। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
6: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदाम्बी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला

0: डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 बजे से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
1: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का मान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता। बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। यह शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया। बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले छठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए SIT गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अधिकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Varma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says principle of nation first has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends 4 officials in connection with Lucknow fire incident. 4 accused arrested. 4 ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirm death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. and Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California.

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz. Musically yours.
1: गुड मॉर्निंग मुंबई, 8:40 ऑन द क्लॉक. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, आरजे भावना को. और इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मस्त मुंबई. लेकिन आज एक्चुअल में मुंबई बहुत ही ज़्यादा मस्त है क्योंकि बारिश ने दस्तक दे दी है. तो अगर आप अपने घर से नहीं निकले हैं तो आपको बता दूँ, प्लीज़ छाती रेनकोट अपने साथ लेकर निकलिए और ध्यान रखिए. अब मौसम बदला है, थोड़ी राहत मिली है, गर्मी जो है वो आपको अब कम लगने वाली है. लेकिन बदलते मौसम में सर्दी जुकाम खांसी ध्यान जरूर दीजिए. विद दैट आपको बता दूं, हमारा प्रोग्राम यानी कि जो सेगमेंट है कल आज और कल स्टार्ट करेंगे. लेकिन उससे पहले बारिश को वेलकम तो कर लें.

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मो स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना। कॉस्मो स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। एनरिचिंग लाइफ।
2: यार, मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
3: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
2: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
3: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
4: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: अरे अरे अरे ना ना ना
1: 8:49 ऑन द क्लॉक. आप सभी के मैसेजेस मिल रहे हैं मुझे एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. पंकज माहौर जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रमोद चिंचोलकर, शुभदा जी विजेंद्र घाटोला कोहला से, महेश बोहारा हमें बड़ा ही प्यारा मैसेज भेजते हैं अजमेर राजस्थान से कि कल तक हमारे यहाँ मौसम गर्मी भरा था पर अभी ठंडी हवाएं चल रही हैं, गर्मी से कुछ राहत मिली है, बारिश की उम्मीद लगा कर बैठे हैं समुद्र किनारे, कभी तो लहराएगी यह है. वेल, शेर शायरी भी मज़े आ रहे हैं. सुबह सुबह बारिश के माहौल में गर्मा गर्म पकौड़े, और अगर आप घर पर नहीं हैं दफ्तर जा रहे हैं तो बारिश के मज़े लेते हुए जाइए, और अगर जाते वक्त ना सही तो आते वक्त उम्मीद रखिएगा कि छतरी आप भूल जाएं और बारिश में भीगते हुए जाएं, लेकिन हाँ ये ध्यान रखते हुए कि घर जाकर गर्मा गर्म काढ़ा या चाय ज़रूर पिए, क्योंकि वीकेंड है ना, अगले दिन काम पर भी तो जाना है. लेकिन हाँ, मौका मिले तो रपट ज़रूर जाइएगा बारिश में, संभल के. लेकिन
0: अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना.

बारिश का मज़ा और बारिश का मौसम दोनों शुरू हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, इस माहौल में हम बहते नहीं हैं, रुक जाते हैं थोड़ा, क्योंकि मुझे पता है मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बारिश के मौसम में भीगने का मज़ा ही कुछ और होता है, पर हमारे प्रोग्राम के बारे में कैसे भूल जाएं हम। आज हम बात करेंगे साउथ मुंबई की, क्योंकि प्रोग्राम हमारा है मस्त मुंबई कल आज और कल, जहां साउथ मुंबई की वो कौन सी जगह है जहां पैर रखने की जगह ही नहीं मिलती। वेल, जहां शादियों की शॉपिंग से लेकर घर का राशन तक सब मिल जाता है, लेकिन हम उसका इतिहास भूलते जा रहे हैं। वेल, आप जब तक गैस करेंगे तब तक आपको ये अगला गाना सुनाती हूँ, और गाने के उस पार बात करते हैं ऐसे ही हमारे कल आज और कल पर मुंबई के, साउथ मुंबई की बेहतरीन जगह की।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

वेल, सुबह के 9 बज चुके हैं। मैं हूँ आरजे भावना आपके साथ ऑन एफएम रेनबो 107.1। मस्त मुंबई प्रोग्राम चल रहा है। कल आज और कल सेगमेंट पर हम बात कर रहे हैं साउथ मुंबई की, उस जगह की जहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलती, और वो है हमारा अपना क्रॉफर्ड मार्केट। आज इसके कुछ ऐसे अनसुने किस्से सुनाऊंगी जो आपको पता ना हो अगर तो आज पता चल जाएंगे और शायद हैरान भी कर देंगे। तो अपनी सुबह की चाय उठाइए और एंजॉय कीजिए खूबसूरत गानों के साथ कुछ और बातें।

वेल, आज बारिश के मौसम में अरमान तो सबके पता चल ही रहे हैं। कोई घर पर सैंडविच खा रहा है, क्यों शुभदा जी, तो कोई मरीन ड्राइव जाने के प्लान बना रहा है ना किशोर जी, और कोई अपनी फसल के बारे में सोच रहा है। वेल, हमारे सभी लिसनर्स, आप सभी के मैसेजेस पढ़ रही हूँ, और आई नो जितनी एक्साइटमेंट मुझे है उतनी ही एक्साइटमेंट आप सबको भी है। वेल, इस एक्साइटमेंट के साथ लेट मी ऑल्सो टेल यू, हम बात कर रहे हैं क्रॉफर्ड मार्केट की। तो मुद्दे पर आते हैं, एक्साइटमेंट को थोड़ा वक्त देते हैं। अब क्रॉफर्ड मार्केट मुंबई जो हमारी है उसकी जान क्यों है? हम दिन में कई बार कहते हैं क्रॉफर्ड मार्केट जा रहे हैं, वहाँ से सामान लाया है, पर कभी सोचा है कि इस नाम के पीछे की कहानी क्या है? इतिहास देखें तो 1865 में मुंबई के पहले म्युनिसिपल कमिश्नर बनकर आए थे आर्थर क्रॉफर्ड। उन्होंने ही इस ग्रैंड मार्केट की प्लानिंग की थी, इसलिए इसका नाम क्रॉफर्ड मार्केट पड़ा। वैसे आज इसे ऑफिशियली

महात्मा ज्योतिराव फूले मंडई कहते हैं, यानी एक ही जगह और दो हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक नाम। वेल, इसी बात पर ये अगला गाना बम्बई मेरी जान के नाम, यानी कि अब जो मुंबई है पर पहले बम्बई थी।

जय हो राधे श्याम की, जय हो सियाराम की, और जय हो बंबई धाम की।

आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, हाँ आपस में जंग, जय घुमा के। अरे समंदर में जैसे है घुल गई भंग, ये रंग देख के मैं हो गया दंग। तो क्या समझे

मुंबई नगरिया की अगर बात करें तो आप सभी मुंबई नहीं इस दिल की जान है, क्योंकि आप सभी के मैसेजेस आ रहे हैं। किशोर नायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जुड़े हैं महाराष्ट्र पुणे से सुनील, सुषमा, अनन्या, राजवीर, और कहते हैं कल पुणे में बारिश हुई, दिल को सुकून मिला इस बहाने, हमें बहुत मज़े आ रहे हैं गाने सुन के। थैंक यू सो मच। शुभदा जी तो छुट्टी मना कर आई हैं। वी ऑल्सो हैव, देखिए हमारे पास रिक्वेस्ट आई है, डॉन फिल्म का गाना सुनना चाहते थे कल्पना राजू उल्लासनगर से, और आपकी और हमारी सोच काफ़ी मिलती जुलती है। नहीं, आपने रिक्वेस्ट की, हमने प्ले कर दी आपकी रिक्वेस्ट के पहली। वेल, अंजू अंधेरी इससे हमारे साथ जुड़ी है, महेश बोहारा, पंकज महौज, वी ऑल्सो हैव, नाम आप अगर बता दें, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर, एंड अलॉन्ग विद दैट विजेंद्र घाटोल अकोला से, प्रमोद चिंचोलकर जी, प्रमोद करखानिस, दीपाली शिरोडकर हमारे साथ जुड़ी है, हमारे साथ 13063 जो लास्ट डिजिट है हमारे साथ जुड़े हैं, बदलापुर से हमारे साथ भी जुड़े हैं, इनफैक्ट 99936 लास्ट डिजिट है, राजलक्ष्मी बदलापुर से। वेल, आप सभी का स्वागत है, आप सुन रहे हैं FM रेनबो 107.1 विथ मी आरजे भावना, जहां हम बात कर रहे हैं क्रॉफर्ड मार्केट की हमारे सेगमेंट में कल आज और कल मस्त मुंबई प्रोग्राम में। विद दैट आपको मिलती हूँ कुछ ही देर में, बने रहिए और सुनते रहिए FM रेनबो 107.1।

0: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

हवा, मौसम तो हर चीज़ बढ़िया लगने वाली है आज. लेकिन उससे पहले आपको मुंबई के बारे में बताते हैं. 9:24 ऑन द क्लॉक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मस्त मुंबई प्रोग्राम पर. हम बात कर रहे हैं कल, आज और कल पर क्रॉफर्ड मार्केट की. इसके इतिहास के बारे में तो आपको पता चल गया कि इसका नाम आखिर क्रॉफर्ड मार्केट क्यों पड़ा, और इसे इसका जो दूसरा नाम है, यानी कि इस जगह के दो नाम हैं जो कि है महात्मा ज्योतिराव फूले मंडई और क्रॉफर्ड मार्केट. और ये दोनों ही नाम सभी को पता होंगे, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं. सबसे पहले तो आपको बताऊं कि अब जो मैं आपको बात बताने वाली हूं उसे सुनकर आपको मुंबई पर गर्व होगा, क्योंकि साल ईयर की अगर बात की जाए 1869 में जब ये क्रॉफर्ड मार्केट बनी, तो ये पूरे इंडिया की पहली ऐसी पब्लिक जगह थी, पब्लिक स्पेस, जो बिजली के बल्बों से जगमगा उठी थी. दैट्स राइट. सोचिए उस जमाने में ये एक्सपेरिमेंट कितना कूल रहा होगा. एक और मज़ेदार बात बताती हूँ. द जंगल बुक के फेमस राइटर रुडयार्ड किपलिंग का बचपन इसी मार्केट के आसपास बीता था, क्योंकि इसके खूबसूरत फाउंटेन को उनके डैड ने ही तो डिज़ाइन किया था. तो अगली बार जब आप वहां से गुजरें तो इन कहानियों को याद जरूर कीजिएगा, और हाँ, आसपास जरूर देखिएगा. क्या पता आपको शायद अपने आसपास इतिहास की कुछ ना कुछ यादें जरूर झलक में दिख जाएं.

0: तब तक आप
1: ये किस्सा सुनिए, हमारी जबानी क्रॉफर्ड मार्केट के नाम और अमिताभ बच्चन की जबानी ये अगले गाने के थ्रू।
2: आओ बच्चों, आज तुम्हें कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे?

0: मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
1: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय।
0: खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ से, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पास पास, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो।
2: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
3: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
2: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
2: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
1: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
2: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
3: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।

0: सोमू सोमू, वो कहानी सुना हो ना, तुमने कहा था।
1: कहानी?
0: हाँ।
1: कौन सी कहानी थी?
0: ओ जब हरिप्रसाद किचड़ में गिर पड़ा था।
1: हाँ।
0: कहा नहीं था? ओ, ओ लोमड़ी की क्या?
1: लोमड़ी क्या? वो लोमड़ी नहीं, गीदड़ की कहानी है वो।
0: हाँ, हाँ, हाँ, सुना हो ना।
1: उतरो, उधर बैठो, जा।
0: सुनाओ ना। मारते क्यों रहते हो हर वक्त?
1: और क्या, पैर नीचे रख, रख नीचे। कहानी सुननी या कि नहीं? तो ये दिया बंद करो। गीदड़ की कहानी। कौन सी कहानी?
0: लोमड़ी।

0: कुछ नहीं हुआ, चिंता नहीं बालिका। अच्छा कहानी कहां तक पहुंची?
1: सोम गिर पड़ा।
0: सोम नहीं, कीदड़।

0: कुत्ते जब भौंके भाग गए, गीदड़ जी हांडी से निकले और धूप चढ़े जंगल पहुंचे, ऊपर से नीचे तक नीले।
1: अच्छा
0: हाँ, सब जानवर देखे डरने लगे, ये कौन है, कैसा जानवर है?
1: मुझे पता है।
0: क्या पता है?
1: गीदड़।
0: चुप बुद्धू। कहाँ से आ गए? हाँ, सब जानवर देख के डरने लगे, ये कौन है, कैसा जानवर है, दिखने में नीला दिखता है, अंदर से लाल बुझक्कड़ है। गीदड़ ने भी चालाकी की।
1: क्या किया?
0: मोटी आवाज में गुर्राया, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ अब जंगल का, मुझको भगवान ने भिजवाया। संभाल के। शेर की धुम्बी हिलने लगी और मुंह से बस निकला हेलो। बंदर का मुंह लाल होता है ना, डर के मारे निकला येलो।

0: तुझे।
1: बहुत दिनों के बाद एक दिन कुछ ऐसा हुआ उस जंगल में। डरती क्यों हो?
2: तुम शोर क्यों कर रहे हो?
1: मैं शोर नहीं करूंगा, मैं तो बिजली हूँ। बिजली?
2: बिजली? तुम तो गीदड़ थे ना?
1: गीदड़? अच्छा, मैं तो सब कुछ हूँ।
2: अच्छा,
1: मत फोन करो। और बस
2: बस

कहानी और किस्से तो हमारे पास भी हैं, पर हाँ गीदड़ की नहीं, क्रॉफर्ड मार्केट की। 9:38 ऑन द क्लॉक आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 विद मी आरजे भावना, जहां मस्त मुंबई प्रोग्राम में सेगमेंट कल आज और कल में हम बात कर रहे हैं क्रॉफर्ड मार्केट की। और साथ ही साथ बारिश का मौसम आ चुका है, दस्तक तो हो ही चुकी है, तो कैसे आपको कहानी ना सुनाए बारिश के। आखिर जितनी मैं तड़प रही हूँ बारिश में भीगने के लिए, उतनी तड़प आपके अंदर भी होनी ही चाहिए। वेल, आप लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही है हमारे पास, यानी कि आप लोगों के मैसेजेस। फिरोज सिगनपुरिया जी की ग्रुप जो है, म्यूजिक लवर की ग्रुप, उनके लिए ये अगला गाना प्ले कर रही हूँ, डेडिकेटेड टू यू एवरीवन हु इज लिसनिंग टू द रेडियो स्टेशन 107.1 राइट नाउ। हमारे साथ जुड़े हैं मंगेश जोशी रोहा रायगढ़ से, और श्रेया राउत, मिलेश गजानन राउत, श्रेया मिलेश राउत, आर्य मिलेश राउत टिगरेपाड़ा से, श्रीधर मुराजकर हमारे साथ जुड़े हैं, गुलाब गायकवाड़ संगमनेर से, और ये हमारे साथ गुलाब गायकवाड़ नवरंगाबाग गुलेवाड़ी तालुका संगमनेर जिला अहिल्यानगर से जुड़े हुए हैं, राकेश माथुर पूना से, दीपाली शिरोडकर, प्रणव शिंदे, शुभदा जी किशोर नायक, विजेंद्र घाटोल एंड ऑल द लिसनर्स, राम प्रजापति जी भी जुड़ चुके हैं। वेल, आप सभी के लिए ये अगला गाना, जस्ट रिमाइंड यू कि बारिश के मज़े ले लीजिए, इतना मत सोचिए, कभी कभी छतरी होकर भी भूल जाने में जो मज़ा आता है वो अलग होता है।

0: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई और मैं हूं आपके साथ आरजे भावना। अब जरा उस कल की कल्पना कीजिए जब क्रॉफर्ड मार्केट में सिर्फ मुंबई के यानी उस वक्त बंबई के रईस और बड़े अफसर घोड़ों और बग्घियों पर शॉपिंग करने आते थे। कितना शांत और आलीशान माहौल रहा होगा, नहीं? और आज को देखिए, हर तरफ चहल पहल, त्योहारों की भीड़ और भागती दौड़ती लाइफ। वक्त के साथ इसका लुक बदला, माहौल बदला, लेकिन यहाँ की एनर्जी आज भी वैसी ही है। ये आज भी मुंबई के बिजनेस का दिल है। वेल विद दैट मुंबई, जो मस्त मुंबई प्रोग्राम है हमारा, इस प्रोग्राम का आखिरी पड़ाव बस यहीं तक। ठीक 10 बजे आप सुनेंगे समाचार और समाचार के उस पार नमस्ते भारत प्रोग्राम विथ मी आरजे भावना ओनली ऑन एफएम रेनबो 107.1। और हाँ, इनके साथ साथ बारिश के मजे भी लेंगे।

दिल के नगरिया, बम्बई नगरिया यानी मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट की बात की हमने मस्त मुंबई प्रोग्राम में कल आज और कल पर। लेकिन आप बताइए कि आप जब अगर शॉपिंग करने जाते हैं तो कौन सी वो जगह है, कौन सी वो मार्केट है जो आप शॉपिंग के लिए ज़रूर जाते हैं, और क्रॉफर्ड मार्केट में आपने लास्ट टाइम कब शॉपिंग की थी, और आखिर कौन सी चीज़ें आपने क्रॉफर्ड मार्केट में नोटिस की, ये भी ज़रूर बताइएगा। मैसेज कीजिए कहाँ, 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और चलिए इसी के साथ, बारिश का मौसम तो आ ही चुका है, और बारिश के साथ अगर बॉम्बे यानी मुंबई की बात करें तो दही हंडी तो याद आती है। इसी पर वाजिद खान की आवाज़ में ये अगला गाना।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz Musically yours.
1: 10 बज चुके हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। अब तक के प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल नई दिल्ली में 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्व और बेहतर समझ को मजबूत करने में मदद करेंगे। IMDB के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून में के महाराष्ट्र, मुंबई सहित तेलंगाना और ओडिशा के बाकी हिस्सों और छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। 28 जून तक कोंकण और गोवा में व्यापक बारिश होने की संभावना है। बात अब खेल जगत की। फीफा विश्व कप 2026 में अमरीका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप आई के मुकाबले में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही फ्रांस के नॉकआउट चरण में पहुंचने का रास्ता साफ हो गया है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ये थे अब तक के प्रमुख समाचार।

गुड मॉर्निंग मुंबई, 10:02 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेरे आरजे भावना के साथ, और शुरू करते हैं हमारा प्रोग्राम नमस्ते भारत। आज की तारीख 23 जून मंगलवार का दिन, और आज हमारे सेगमेंट भारत हमको जान से प्यारा है में हम इंडिया की एक ऐसी छिपी हुई विरासत की सैर पर चलेंगे जिसके बारे में हमारे इतिहास की किताबों में भी शायद बात कम की गई हो। महल और किले तो हम सबने देखे हैं, लेकिन क्या कभी जमीन के नीचे बने खूबसूरत महलों को देखा है? आज मैं आपसे बात करूंगी भारत के प्राचीन अजूबे कदम कुएं यानी बावड़ी और वाव की। तो चाय का कप थामिए और सुनिए इन गानों के साथ कुछ और बातें।

0: 10:14 ऑन द क्लॉक और आप सभी के मैसेजेस आ रहे हैं. अंकित जुड़े हैं हमारे साथ, विजेंद्र घाटोल, प्रमोद चिंचोलकर, गणेश पाटिल, वाधवन बाबा दादर से, जयंत मानिकलाल दवे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंकज महौर, शुभलक्ष्मी मस्तकर, दीपाली शिरोडकर, शुभदा जी, प्रणव शिंदे, किशोर नायक, महेश बुहारा, आदर्श कनौजिया, अजय साखरे इंदौर से, फिरोज सिगनपुरिया, राम प्रजापति, एंड वी ऑल्सो हैव उल्लासनगर से कल्पना राजू. वेल, इसी के साथ आपको बता दूं, नमस्ते भारत में हम बात कर रहे हैं कदम कुएं की. अब ये क्या है और ये इतिहास में कितना जरूरी था, बात करेंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद.
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू,
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू.
2: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन.
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ.
0: अच्छा, चलिए सोचिए जरा, सैकड़ों साल पहले जब हमारे पूर्वजों के सामने पानी की भारी कमी जैसी चुनौतियाँ आईं तो उन्होंने क्या किया होगा. तब रिजर्वॉयर्स नहीं हुआ करते थे, तब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, तो करते क्या होंगे. उन्होंने ज़मीन के ऊपर बड़ी इमारतें बनाने के बजाय ज़मीन के नीचे कई मंजिला गहरे आलीशान महल खोद डाले. इन्हें गुजरात में वाव और राजस्थान में बावड़ी कहा जाता है. इसमें नीचे उतरने के लिए सैकड़ों सीढ़ियां और नक्काशीदार पिलर्स बने होते हैं. मज़ेदार बात यह है कि बहुत ज़्यादा गर्मी यानी भीषण गर्मी में भी यहाँ का टेम्परेचर यानी तापमान बाहर से काफ़ी ठंडा रहता है. है ना कमाल की सोच. वेल, टेक्नोलॉजी तो पहले भी थी, बस तरीके अलग थे. वेल, आपको क्या लगता है, आपने कौन सी रीसेंट जगह है जहाँ पर आपने बावड़ी देखी है और अभी भी वहाँ इस्तेमाल होती है बावड़ी, बताइए. व्हाट्सएप कीजिए 8657661071 पर. विद दैट, अगला गाना.

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

10:30 ऑन द क्लॉक, 10:30 बज चुके हैं. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1. मेरे आरजे भावना के साथ नमस्ते भारत प्रोग्राम चल रहा है और हम बात कर रहे हैं कदम कुओं की. वैसे इन्हें बावड़ी और वाव भी कहा जाता है और बावड़ियों का इतिहास सिर्फ पानी बचाने तक सीमित नहीं था. ये उस दौर के सोशल कम्युनिटी सेंटर्स हुआ करते थे. वो कैसे? वेल, मैं बताती हूँ आपको कैसे. दूर दूर से आने वाले मुसाफिरों के ठहरने की जगह से लेकर गांव के लोगों के सुख दुख बांटने का ये सबसे पसंदीदा ठिकाना था. जैसे हम कैफेज में बैठते हैं, वैसे ही सभी गांव के लोग शाम के वक्त या जब कभी उन्हें मौका मिलता, फुर्सत मिलती, वो वहां पर बैठते और चाहे वो कल्चरल प्रोग्राम हो, गांव के त्यौहार हो, वो सारे ही उसके आसपास मनाया करते. यहाँ पानी भरने आने वाले लोग ठंडी छाँव में बैठते थे, बातें करते थे, लोकगीत गाते थे और इस तरह पूरी कम्युनिटी आसपास में जुड़ी रहती थी. जैसे एक चबूतरे के पास एक कम्युनिटी बनती है, वैसे ही बावड़ियाँ जो होती हैं ये भी वैसा ही काम करती थी. और जब हवाएं चलती तो बावड़ी की पानी जो है उनके साथ साथ ठंडी हवाएं भी बहुत ही सुकून देती. और जैसे हम समुद्र के पास बैठकर बातें करते हैं, तो वैसे ही बावड़ियाँ एक छोटी सी कम्युनिटी की तरह आपका अपना पर्सनल स्पेस हुआ करता था. वेल, मैं तो चली गई उस दौर में. आप बताइए, आपका एक्सपीरियंस है, कभी आपने देखी है बावड़ी इन रियल लाइफ? हमारी इस खोई हुई विरासत की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है. किस तरह एक ऐतिहासिक इमारत कह लीजिए या फिर एक छोटा सा तालाब या फिर बावड़ी आपको एक अलग दुनिया में एक अलग सैर पर ले चलती है ना? कमाल की बात.

10:40 के आगे अब बढ़ते हैं 10:41 ऑन द क्लॉक और एक बार फिर से स्वागत है आपका FM Rainbow 107.1 नमस्ते भारत प्रोग्राम सुन रहे हैं आप और हम बात कर रहे हैं कदम कुओं की जिसे वाव और बावड़ी भी कहते हैं। आज जब पूरी दुनिया वाटर क्राइसिस से परेशान है तब भारत की ये प्राचीन विरासत हमें बहुत कुछ सिखाती है। बिना किसी बिजली या आधुनिक मशीनों के रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ये तरीका आज के इंजीनियर्स को भी हैरान कर देता है। इनफैक्ट रेन हार्वेस्टिंग नहीं बल्कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी हमें जानना बाकी है। आज जब हम मॉडर्न लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें अपनी प्राचीन सफलता से सीख लेकर पानी बचाने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। वेल, मुझे पता है कि बारिश के आते ही आप सब बड़े एक्साइटेड हैं कि अब तो सारी तकलीफ हट गई है, अब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिम्मेदारी हमें फिर भी निभानी है। बारिश के मज़े लेते हुए खुद का ध्यान रखिए और हाँ, पानी जल जीवन है हम कहते हैं और इसे मानना भी चाहिए। सो कोशिश कीजिए कि भले ही आपको पता है कि बारिश में मज़े लेने हैं लेकिन थोड़ा संभल के। शो के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और सुनते हैं आज के सुबह का ये बेहतरीन गाना जो आप सुनेंगे फ्रॉम द फिल्म पहेली और लगान से और फिर आप लोगों से थोड़ी और बातचीत। किरण वाला जी आ चुके हैं इन द स्टूडियो वैसे लेट मी टेल यू और ठीक 11 बजे उन्हीं की आवाज में सुनेंगे आप समाचार और समाचार के उस पार ब्रेक फ्री प्रोग्राम। सो बने रहिए और सुनते रहिए FM रेनबो म्यूजिकली योर्स।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

वेल 10:52 ऑन द क्लॉक और मेरे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन जाने से पहले कुछ और चीज़ आपको बताना भूल गई थी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, तो सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। वेल हम बात कर रहे थे नमस्ते भारत पर कदम कुओं की, और यानी कि बावड़ी और वाव। तो अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो आपके पास जब 100 की पत्ती जो होगी ना, यानी 100 का नोट, अपने वॉलेट खोलिए और 100 के नोट को ज़रा पीछे घुमाइए, यानी उल्टा कीजिए और देखिए उसके पीछे किसका चित्र बना है। एग्जैक्टली कभी गौर से ज़रूर देखिएगा, और अगर अभी है नोट आपके पास तो ज़रूर चेक कीजिए। वो गुजरात के पाटन में रानी की वाव जो है, जहाँ गुजरात में स्थित है, उसकी पिक्चर है। ये 7 मंजिला गहरा कदम कुआं वास्तुकला का इतना बेजोड़ नमूना है कि इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। इसे 11वीं सदी में रानी उदयमती ने अपने पति की याद में बनवाया था। पानी जैसे कुदरती संपत्ति को सहेजने का ऐसा खूबसूरत तरीका पूरी दुनिया में सिर्फ भारत के पास ही था, है ना इंटरेस्टिंग बात। कभी कभी हम अपने आसपास की चीज़ों पर नज़र ही नहीं डालते कि कितनी अनमोल और प्यारी चीज़ें हमारे आसपास हैं, चाहे वो हमारे मॉन्यूमेंट हो, ऐतिहासिक इमारत हो, या फिर अपने लोग। तो इस बार कोशिश ज़रूर कीजिए कि अपने आसपास की छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, और हाँ बारिश के मज़े ज़रूर लीजिए। वेल विद दैट मैं आरजे भावना लेती हूँ इजाज़त, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। ठीक 11 बजे आप सुनेंगे समाचार और किरण माला जी होंगे आपके साथ ऑन FM रेनबो 107.1 म्यूजिकली योर्स।

0: Swali FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल. FM रेनबो का यह प्रसारण अब आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं. प्रस्तुत है हिंदी में समाचार. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी. इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे. सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्वर गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल है. केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे. इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है. इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों और कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा. सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे. IMD के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा के बाकी हिस्सों में छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है. 28 जून तक कोंकण और गोवा में व्यापक बारिश होने की संभावना है. समाचार के अंत में, FIH प्रो लीग के शुरुआत मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा. 2024 में चीन के हुलून बुइर में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी के बाद ये भारत और पाकिस्तान के बीच पहला मुकाबला है. 2024 में हुए मुकाबले में भारत ने 2-1 से जीत हासिल की थी. भारतीय टीम ने कल FIH प्रो लीग के रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया. भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए. अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार.

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 पर और ये समय होता है कार्यक्रम ब्रेक फ्री का। मैं हूँ आरजे किरण माला। इस समय आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब और तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपका हमारा साथ बना रहेगा ठीक 2 बजे तक, तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए एफएम रेनबो।

आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 पर और मैं हूं आरजे किरण माला इस समय आपके साथ। तो आज बहुत ही खास दिन है, उसी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। जी हाँ, आज दुनिया में कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें महिलाएं काम ना कर रही हो, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब बहुत सारे काम यानी बहुत सारे प्रोफेशन महिलाओं के लिए सही नहीं माने जाते थे, जैसे आर्मी, इंजीनियरिंग, पत्रकारिता, घर से दूर जाकर फील्ड में काम करना या लेट नाइट शिफ्ट में काम करने वाली नौकरियां। इस तरह के फील्ड्स को सिर्फ लड़कों के लिए ही ठीक माना जाता था, लेकिन समय बदला, सोच बदली और आज महिलाएं ऐसे सभी फील्ड में काम कर रही हैं जिनमें पहले सिर्फ पुरुष ही काम किया करते थे। तो इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के ज़रिए कह सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर तो आपके पास है ही है, लेकिन फिर से एक बार मैं बता दूं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
2: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
3: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
2: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जी हाँ, इस समय ठीक 11:21 हुए हैं और आप सुन रहे हैं FM रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम चल रहा है ब्रेक फ्री। तो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि ऐसे बहुत सारे फील्ड थे पहले जिनमें महिलाएं काम नहीं करती थी। ऐसे ही एक प्रोफेशन की हम बात करेंगे जिसमें पहले महिलाएं नहीं जाया करती थी, इंजीनियरिंग में। पहले इस प्रोफेशन को सिर्फ लड़कों के लिए ही ठीक माना जाता था। किसी फैक्ट्री या कारखाने में मशीनों पर काम करना या किसी साइट पर दिन भर रहकर काम करना। लेकिन आज महिलाएं इस तरह के काम बहुत अच्छी तरह से कर रही है। एक समय ऐसा भी था जब लड़कियों को ठीक से पढ़ाया भी नहीं जाता था। सावित्री बाई फुले जी को पढ़ने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा था, आज ये सब जानकर बहुत हैरानी होती है। लेकिन आप ज्यादा हैरान परेशान मत होइए, क्योंकि सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना।

0: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: ईकेवाईसी
1: एनईएफटी आरटीजीएस
0: आईएमपीएस
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।
2: इस समय ठीक 11:31 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आरजे किरण वाला आपके साथ, हमारा साथ बना रहेगा ठीक 2 बजे तक। आज हम आपको भारत की पहली महिला इंजीनियर के बारे में बताएंगे। 15 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। शादी के बाद एक बेटी को जन्म दिया और बेटी के जन्म के ठीक 4 महीने बाद उनके पति का निधन हो गया। 17-18 साल के आसपास उनकी उम्र थी। मानसिक तौर पर पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन वो पढ़ना चाहती थी और पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी। उनके पिता ने उनका पूरा साथ दिया। ये थी भारत की पहली महिला इंजीनियर, इनका नाम है ए ललिता।

इस समय ठीक 11:36 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और मैं हूँ आरजे किरण माला इस समय आपके साथ। 1940 के आसपास का समय था जब ए ललिता ने इंजीनियर बनने का सपना देखा और चेन्नई के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। इस कॉलेज में उनके पिता भी प्रोफेसर थे। खास बात यह है कि ये सिर्फ लड़कों का कॉलेज था, इसमें कोई भी महिला छात्र नहीं थी। हम समझ सकते हैं कि ये उनके लिए काफ़ी मुश्किल रहा होगा। इस पढ़ाई के लिए ललिता जी को कॉलेज के हॉस्टल में भी रहना पड़ा। वैसे उन्हें कॉलेज के स्टाफ का पूरा सहयोग मिला। सप्ताह के अंत में वो अपनी बेटी से भी मिलने जाया करती थी जो उनके किसी रिश्तेदार के पास रहती थी।

इस समय ठीक 11:41 हुए हैं और आप सुन रहे हैं FM रेनबो चैनल। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर मैसेजेस आए हुए हैं, यानी एक से बढ़कर एक मैसेजेस आए हुए हैं। जो छोटे छोटे मैसेजेज है वो मैं पढ़ लेती हूँ जल्दी से। यहाँ पर राकेश माथुर जी पुणे से लिखते हैं कि हमारे पुणे की यूनिवर्सिटी का नाम भी आदरणीय सावित्रीबाई फुले जी के नाम पर है। महिला ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ये समाज का फैलाया मिथक था जो अब धीरे धीरे दूर हो रहा है। जी हाँ, बहुत खूब आपने कहा। सच में आज महिलाएं कहाँ नहीं है, हर काम कर रही हैं और आगे भी बढ़ रही हैं। और भी मैसेजेस है जो मैं पढ़ लेती हूँ। एक मैसेजेस आया है कि महिला सशक्तिकरण होने से बहुत सी महिला पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है और कामयाबी हासिल कर रही है। और लिखते हैं कि फ्लावर की तरह नाजुक नाजुक ही नहीं है, फायर की तरह कड़क निर्णय भी ले सकती है। लिखते हैं संजय दर्शन मलाड से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले गाने की ओर।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू शर्तें लागू आज ही संपर्क करें।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।
2: इस समय ठीक 11:46 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 MHz पर। हम बात कर रहे हैं पहली महिला इंजीनियर ए ललिता जी के बारे में। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिग्री हासिल की, इस तरह वो भारत की पहली महिला इंजीनियर बनी। इंजीनियर बनने के बाद उन्होंने कई तरह की रिसर्च की। आज उनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आज है इंटरनेशनल वुमन इन इंजीनियरिंग डे, यानी हम कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान और उनकी उपलब्धि। तो हम आज भारत की पहली महिला इंजीनियर ए ललिता जी को कोटि कोटि नमन करते हैं। वो भारत की महिलाओं के लिए एक मिसाल है, यानी महिलाएं कोई भी ऐसा काम कर सकती है जो पहले किसी भी महिला ने कभी नहीं किया। इसे ही कहते हैं ब्रेक फ्री होकर जीना और आगे बढ़ना। तो चलिए हम भी बढ़ते हैं अगले गाने की ओर।
0: अपने व्यापार की प्रगति

इस समय ठीक 11:53 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप प्रोग्राम सुन रहे हैं ब्रेक फ्री। तो यहाँ पर एक और बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज आया हुआ है। अजमेर राजस्थान से महेश बोरा लिखते हैं, नारी वो शक्ति है जो अपने हौसले के दम पर कठिनाइयों से लड़ जाती है और परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना देती है और तमाम ऊंचाइयों को छू लेती है। जी हाँ, बहुत खूबसूरत मैसेज आपने दिया है। इसी तरह बहुत सारे श्रोता हैं जो इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, जैसे कि प्रणव शिंदे, विजेंद्र घटोल अकोला से, शंकराचार्य तेलंगाना से हमें सुन रहे हैं, बीना जी मलाड से, शुभदा जी भी सुन रही हैं, पंकज मोहड़ अमरावती से हमें सुन रहे हैं, प्रमोद चिंचोलकर जी भी हैं और साथ ही फिरोज सिंगनपुरिया भी सुन रहे हैं, अशोक पाटिल वर्ली से भी हैं और अंजू अंधेरी ईस्ट से भी सुन रही है और साथ ही धनंजय न्यू मुंबई से भी हमें सुन रहे हैं। तो इस तरह बहुत सारे श्रोता हैं जो हमसे जुड़ गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले गाने की ओर। बहुत ही खूबसूरत है ये गाना शारदा और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का FM रेनबो चैनल. FM रेनबो का यह प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी सुन सकते हैं. प्रस्तुत है हिंदी में समाचार. अल्पसंख्यक कार्य और मछली पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से भारतीय किसानों, मछुआरों, कारीगरों और छोटे व्यापारियों को वैश्विक स्तर पर कारोबार करने में मदद मिलेगी. इससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा. वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होने वाला ये समझौता ब्रिटेन में भारतीय सामानों की पहुंच बढ़ाएगा. यूरिया, डाई अमोनिया, सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज पिछले सप्ताह होमुर्ज जल डमरू मध्य को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं. रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं. कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमेरिकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की प्रतिनिधित्व करेंगे. लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे. किदांबी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ फू का सामना करेंगे. अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार.

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय ठीक 12:02 हुए हैं और ये समय होता है प्रोग्राम म्यूजिक कैफे का। मैं हूं आरजे किरण माला। समय आपके साथ सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार आदाब और तहे दिल से आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, हमारी हिंदी फिल्में खलनायकों के बिना पूरी नहीं होती। प्राण साहब और रंजीत ये ऐसे खलनायक हुए हैं, जब आम लोग इनसे मिलते थे तो सोचते थे कि ये बुरे इंसान है, क्योंकि लोगों ने इन्हें पर्दे पर बुरे काम करते हुए देखा था। एक तरह से ये उनके अभिनय की तारीफ थी, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। तो इसी पर हमारा कार्यक्रम बेस्ड है। हम आपको यहाँ पर एक गाना सुनाएंगे और गाना सुनकर आपको हमें बताना है कि आज क्या विशेष दिन है। तो जल्दी से सुने ये गाना।

इस समय ठीक 12:09 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो अब से कुछ ही पल यानी थोड़े से यानी 12:10 पर आप सुनेंगे एक छोटा सा ब्रेक, तो उसके बाद हम आपसे तुरंत मिलेंगे।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
4: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू,
3: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
4: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
3: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
5: जी हाँ, समय ठीक 12:10 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो। नवंबर 1980 में एक फिल्म आई थी जिसमें एक अभिनेता ने एक विलन के रोल को इतनी शिद्दत के साथ किया था कि निजी जिंदगी में लोग उनसे डरने लगे थे। कह सकते हैं कि उस विलन के रोल में उनका अभिनय बहुत ही दमदार था। उस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे BR चोपड़ा। आज उस विलेन के रोल का यानी जो रोल जिन्होंने किया है उस अभिनेता का हैप्पी बर्थडे है। क्या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए उनका नाम बता सकते हैं? लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि जैसे ही मैंने व्हाट्सएप देखा और ये जो गाना प्ले किया हमने, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उस अभिनेता को ढेर सारी शुभकामनाएँ देना शुरू कर दिया व्हाट्सएप के ज़रिए। तो यानी सभी को पता ही चल गया है आज किन का हैप्पी बर्थडे है। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं का एक और गाना।

नवंबर 1980 में फिल्म आए थे इंसाफ का तराजू। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे बी आर चोपड़ा जी। फिल्म के मुख्य कलाकार थे राज बब्बर साहब, जीना तमान और पद्मिनी कोल्हापुरी। फिल्म में विलेन का रोल किया था राज बब्बर जी ने। आज राज बब्बर जी का हैप्पी हैप्पी बर्थडे है, तो हम उन्हें उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। उनका जन्म 23 जून 1992 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो आज इस कार्यक्रम में हम उन्हीं के हिंदी फिल्मों के बेहतरीन गाने आपको सुनवा रहे हैं।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: इस समय ठीक 12:20 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर, और कार्यक्रम चल रहा है म्यूजिक कैफे। 1975 में उन्होंने दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अभिनय की तालीम हासिल की। 1977 में उनके पहली फिल्म आई थी किस्सा कुर्सी का। इसके बाद इंसाफ का तराजू, हम पांच 1981 में आई, प्रेम गीत। इस फिल्म की कामयाबी ने उन्हें एक विलन से हीरो बना दिया। इस फिल्म के गाने भी बहुत पसंद किए गए। राज बब्बर साहब ने हिंदी फिल्मों में नायक के साथ साथ खलनायक की भूमिकाएं भी बहुत अच्छी तरह से निभाई। निकाह, अर्पण, अगर तुम ना होते, आज की आवाज़, रुदाली उनकी यादगार फिल्में रही। टीवी के पर्दे पर भी वो काफ़ी सफल रहे। बाद में वो राजनीति में गए और वहाँ भी सफल रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले गाने की ओर।

आप सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार, जोहार, जय हिंद। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं, गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान को अपनी भाषा, संस्कृति और जड़ों से जोड़े रखती है। बहुत

संदेश भेजने के लिए आपसे यही निवेदन रहेगा हमारा कि इसी तरह से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। स्वागत है एक बार फिर से, और आइए अब चलते हैं हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओ, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी भारत की विभिन्न झीलों के बारे में, याद है ना? हमने बात की थी मणिपुर की अनोखी झील लोकटक, हिमालय की सुरम्य वादियों में बसी मानसरोवर झील, ओडिशा की चिल्का झील और कश्मीर की डल झील की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। तो आइए अब चलते हैं आज की चर्चा में। श्रोताओ, इस सप्ताह उमंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ले चलेंगे भारत के विचित्र, रहस्यमयी और अनूठी गुफाओं में। सचमुच बड़ा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होगा उनके बारे में जानना, है ना? लेकिन पहले आपको ये तो बता दें कि हम गुफा को भौगोलिक रूप से परिभाषित कैसे करेंगे। तो आइए सुनते हैं इसकी परिभाषा। श्रोताओ, आम बोलचाल की भाषा में हम झील, पर्वत, लगून, मानसून जैसे शब्दों को तो कह देते हैं, लेकिन सही मायनों में उसकी परिभाषा वैज्ञानिक रूप से नहीं जानते। श्रोताओ, गुफा पृथ्वी की सतह के नीचे या अंदर प्राकृतिक रूप से बनी हुई खोखली जगह को कहते हैं। अगर आप पूछें कि इसे सरल शब्दों में कैसे कहें, तो आपको बता दूं कि धरती या पर्वत या समुद्र के भीतर प्राकृतिक रूप से बनी खोखली जगह को गुफा कहते हैं। हाँ, ये कभी कभी मानव निर्मित भी हो सकती है। तो आइए अब आते हैं आज के विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अद्भुत गुफा की, जिसे हम भीम बैठका गुफा के नाम से जानते हैं। श्रोताओ, इस नाम के पीछे एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा है। ऐसा कहते हैं कि यह नाम महाभारत के भीम से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि भीम इस स्थान पर रुके थे, भीम बैठका यानी भीम के बैठने की जगह। इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। सचमुच ये बड़ी रोचक बात है, इस गुफा को भीम की आश्रय स्थली भी कहा जाता है। तो आइए श्रोताओ, अब जानते हैं कि भीम बैठका की गुफा है कहाँ। तो आपको बता दें, ये जगह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में है, जो राजधानी भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। ये अत्यंत प्राचीन गुफाएं हैं। लेकिन अब एक और प्रश्न मेरे मन में आता है, आपके मन में भी आ रहा होगा, और वो प्रश्न ये है कि भीम बैठका की गुफाओं का पता कैसे चला। तो श्रोताओ, इसके पीछे बड़ा मनोरंजक किस्सा है। वहां के स्थानीय लोग तो इन गुफाओं के बारे में जानते थे, लेकिन इसका पता विश्व को तब चला जब डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने इसके बारे में प्रामाणिक ढंग से जानकारी दी। तो आइए जानते हैं कैसे पता चला डॉक्टर विष्णु वाकणकर जी को। तो आपको बता दें कि डॉक्टर विष्णु वाकणकर एक जाने माने पुरातत्वविद रहे हैं। वर्ष था 1956। एक बार वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। ट्रेन विंध्य पर्वतमाला से होकर जा रही थी। श्रोताओं, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो डॉक्टर विष्णु वाकणकर को जरूर याद रखिएगा, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। जी, तो मैं आपको बता रहा था कि वे ट्रेन से भोपाल से इटारसी जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने ट्रेन की खिड़की से कुछ ऐसी चट्टानों और पहाड़ियों को देखा जो बड़ी कलात्मक लगी। वे दूसरी चट्टानों से भिन्न थीं। वे उन्हें अपनी फ्रांस और स्पेन की यात्रा के दौरान देखी गई प्रागैतिहासिक शैल चित्रों वाली चट्टानों जैसी लगी। तो फिर क्या था, वे उतर गए अगले स्टेशन पर और उस स्थान पर पहुंचे। बाद में उन्होंने बताया कि पहली गुफा में घुसते ही वे आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने वहां बहुत सारे शैल चित्र यानी पत्थरों पर बने चित्र देख लिए, जिन्हें हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं। जी हाँ श्रोताओ, इन गुफाओं में 30,000 वर्ष तक पुराने शैल चित्र हैं, जो पुरापाषाण युग से मध्यकाल तक की झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए डॉक्टर विष्णु वाकणकर को सन 1975 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और वर्ष 2003 जुलाई में यूनेस्को ने भीम बैठका की गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया। ये खोज पुरातत्व और मानव अध्ययन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये साबित हुआ कि भारत में मानव सभ्यता कितनी प्राचीन और निरंतर है। तो आइए श्रोताओ, आप जानते हैं कि इन गुफाओं में क्या ऐसी बात है जो इसे खास बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात मानव आवास है, जिसमें 600 से भी अधिक शैलाश्रय या रॉक शेल्टर्स हैं। ये प्रकृति द्वारा बने आवास हैं। इन गुफाओं में शिकार, सामूहिक नृत्य, युद्ध, पशु पक्षी और प्रारंभिक मानव की रोजमर्रा की जिंदगी के चित्र हैं। श्रोताओ, इन चित्रों में गेरुआ, लाल, सफेद, पीले और हरे रंगों का इस्तेमाल हुआ है। ये रंग वनस्पति से बने हैं, इसलिए हजारों वर्षों बाद भी ये टिके हुए हैं। अगस्त 1990 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थान घोषित किया गया। ये वो जगह है श्रोताओ, जहां संभवतः आदि मानव ने पहली बार पत्थरों की दीवारों को कैनवस बनाया। हम भीम बैठका की गुफाओं को
भारत के इतिहास की

0: पहली चित्र गैलरी भी कह सकते हैं। तो श्रोताओ, भीमबेटका की गुफाएं सचमुच अद्भुत हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन दोनों पतों पर हमारे प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम संकल्प की धनी वसंती। श्रोताओ, ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण नेत्री वसंती के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में एक नाटक के द्वारा मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
1: दोस्तों, कभी सोचा है तुमने कि हमारी सभ्यताओं को किसने पाला पोसा है, किसने संवारी है हमारी दुनिया? मां की गोद ने और नदियों की घाटियों ने। हजारों हजारों साल से मां ने हमें सीने से लगाया, हमें जीवन दिया है। यही तो है नदी, जिसने हमारी सभ्यता को सींचा और हरा भरा किया है।

नदी मनुष्य के साथ रही है, उसकी हर हंसी हर आंसू में। वो हम सफर रही है मनुष्य के हर सफर में। तभी तो हर सभ्यता ने नदी को माँ कहा है।

लेकिन कभी कभी मनुष्य अपनी नासमझी और नादानी में जीवन देने वाली इस मां के जीवन को ही खतरे में डाल देता है। उत्तराखंड की एक बहुत खास नदी कोसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।

0: लेकिन भारत देश की महिलाएं अपनी प्रकृति की रक्षा के लिए हमेशा ही तैनात रही हैं। 1972 में चिपको आंदोलन की शुरुआत कर अपने जंगलों को बचाने वाली गांव की ही एक अनपढ़ 50 वर्षीय बाल विधवा गौरा देवी थी।
1: और इस बार भी कोसी की रक्षा के लिए एक महिला ही आगे आई। हाँ, आज की हमारी नायिका बसंती बहन ने कोसी को बचाया।
0: भला क्यों बचाया बसंती ने कोसी को? क्या नाता है कोसी और बसंती का? आखिर ये बसंती है कौन? ये बसंती भी कुछ खास ही है कोसी की तरह। दोनों ही हिमालय के ऊंचे शिखरों से ही नहीं बल्कि घने जंगलों से निकली हैं। आइए जानते हैं कि उनके बीच कैसे बनता है एक गहरा नाता और कैसे बचाती हैं वे एक दूसरे को।
1: ये कहानी है उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक छोटे से गांव की।

0: सन 1980 अप्रैल का एक दिन,
1: बसंती। अरे बसी, ओ बसी कहाँ है तू?
2: अरे बुआ क्यों चिल्ला रही हो? मैं यहाँ बुरांस के फूल चुन रही हूँ।
1: अरे क्या करेगी इनका तू? है
2: क्या करूँगी? गमकुआ इधर बनाऊंगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि इससे शरबत बनता है? तो शरबत बनाऊंगी।
1: अरे बसी तू बिल्कुल बावरी है। अरे चार रोज बाद तेरा ब्याह है और आज जंगल में बुरांस के फूल चुन रही है। हा? चल घर चल। अरे चल, सब खोज रहे हैं तुझे। अरे चल ना जल्दी कर।
2: नहीं।

0: अभी तो उसने ठीक से अपने गुड्डे गुड़िया का भी ब्याह नहीं रचाया था, और उस छोटी सी गुड़िया का ब्याह हो गया।
1: शादी के लगभग 2 साल बाद एक रोज शाम के समय सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए जब बसंती घर पहुंची तो घर का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था।
0: सारा गांव उसके घर में इकट्ठा था और बहुत तेज रोना धोना मचा था। बसंती को कुछ समझ में आता, इससे पहले ही मां उसकी ओर तेजी से आई और गले लगाकर रोने लगी।

अरे बसंती, बेटी तू बर्बाद हो गई, तेरी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ गई बेटी। अरे तू

0: और इस तरह इससे पहले कि बसंती ब्याह के मायने समझती, वो विधवा हो गई। वक्त ने धीरे धीरे उसे विधवा होने का मतलब भी समझा दिया। पिता को अपनी मासूम बच्ची के भविष्य की चिंता सता रही थी, लेकिन नियति ने तो उसके लिए कुछ और ही संयोग रच रखा था। बसंती के पिता को उनके एक मित्र से कौसानी के लक्ष्मी आश्रम के बारे में पता चला।
1: आजादी के पहले गांधी जी की शिष्या सरला बहन ने इस आश्रम की शुरुआत पहाड़ की बच्चियों को शिक्षित करने के लिए की थी। बाद में ये आश्रम उन महिलाओं के लिए जीवन की शाला बना जिन्हें दुनिया विधवा कहकर बेसहारा समझती है। वही महिलाएं दक्ष होकर आज समाज का सहारा बन रही हैं।
0: ये सोचकर कि बसंती का भविष्य सबसे ज्यादा आश्रम में ही सुरक्षित रहेगा, बसंती के पिता ने बसंती को इसी आश्रम में भेज दिया।
1: घर से आश्रम की यात्रा बसंती के लिए एक जीवन से दूसरे जीवन में प्रवेश की यात्रा बन गई। जीवन के 12 बसंतों ने ही उसे एक चहकती बालिका से विधवा और फिर आश्रमवासी बना दिया।
0: ये तो थी कहानी बसंती की, पर बसंती का आखिर क्या नाता है कोसी से? है ना, बहुत गहरा नाता है। उस रोज जब बसंती पहली बार

अपने पिता के साथ आश्रम जा रही थी तो उसे लगा कि ये उसकी जिंदगी की अंतिम यात्रा है। मगर उसी रास्ते में उसकी भेंट कोसी नदी से हुई।

0: हुआ यूं कि कोसानी जाते हुए मन्नान में बस दोपहर के भोजन के लिए कोसी नदी के निकट रुकी तो उदास बसंती भोजन करने के बजाय कोसी के किनारे जाकर बैठ गई।
1: थोड़ी देर बाद उसे कोसी के निर्मल जल से आवाज आई। मानो कह रही हो, बेटी बसंती, तू उदास मत हो, ये यात्रा तुम्हारे जीवन की अद्भुत यात्रा साबित होगी। इस यात्रा से तुम अपने जीवन को मायने दे सको, तुम अपने मायने दे सको।
0: बसंती घबराकर इधर उधर देखने लगी, पर कहीं कोई नहीं था। फिर ये आवाज किसकी थी? बसंती ने पानी में झांका तो उसे अपनी ही छवि दिखाई दी। अब तक उसकी आंखों से आंसू छलकने बंद हो चुके थे और चेहरे पर संशय की जगह विश्वास अपनी जड़ जमाने लगा था।
1: उसके बाद से बसंती को जब भी बड़े सवाल सालते, वो कोसी के किनारे चुपचाप अकेले जा बैठती और उसे जवाब मिल जाता। दरअसल कोसी उसकी अंतरात्मा की परछाई बन चुकी थी।
0: साल पर साल गुजरते गए। बसंती अपने सामाजिक कार्यों में मगन रही और कोसी भी अपनी जल तरंगों से घाटी को हरा भरा करती रही।

0: लेकिन लोगों की नादानी से कोसी की रस धाराएं तेजी से सूखने लगी। और एक दिन ऐसा भी आया कि उत्तराखंड की सरकार ने कोसी पर पहरा लगा दिया। ये बात सन 2003 की गर्मियों की है।
1: बसंती दीदी, ओ बसी दी, कहाँ हो? गजब हो गया, कुछ सुना तुमने? दीदी,
2: अरे
1: दीदी,
2: क्या हुआ शांति? क्यों सारा पहाड़ सर पर उठा रखा है? मैं यहाँ गौशाले में हूँ, घास काट रही हूँ।
1: दीदी दीदी, अभी अभी मैं नीचे गांव से आ रही थी। वहाँ सरकार ने कोसी पर जगह जगह पुलिस बैठा दी है।
2: क्या?
1: सरकार का हुक्म है कि खेती के लिए कोई भी कोसी का बूंद भर पानी भी इस्तेमाल न करे।
2: अरे ऐसा कैसे हो जाएगा? कोसी हमारी है या सरकार की?
1: कहते हैं कि कोसी का पानी बहुत तेजी से घट रहा है, इसलिए सारा पानी अल्मोड़ा शहर जाएगा। वहाँ पीने का पानी हमारी कोसी से ही तो मिलता है ना।
2: अच्छा चल, आश्रम चलकर सबको इसकी खबर देते हैं।
1: ठीक है, चल ठीक है दीदी, चलो चलो।
3: उस रोज रात को कोसी नदी के बारे में आश्रम में भोजन के बाद चर्चा हुई।
4: हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इसका उपाय क्या है, क्या करें? हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मेरी तो ऐसा है, हम

0: सबको मिलजुल के कुछ करना चाहिए।
1: कोसी नदी को बचाने की जिम्मेदारी आश्रम की बड़ी दीदी राधा भट्ट ने बसंती को सौंपी।

0: अब हम लौटते हैं लक्ष्मी आश्रम की ओर, जहां सुबह सवेरे झोला लेकर बसंती बहन गांव का रुख कर रही हैं। ऐसा करते हुए उन्हें 45 दिन हो चुके हैं। वो रोज सुबह 6 बजे बरासे घाटी के गांव की ओर चल पड़ती हैं। शुरू में कोई उनकी बात को सुनने समझने को तैयार नहीं था। एक दिन बसंती को महिलाओं का एक झुंड मिला। सभी के हाथों में रस्सी और दराती थी। वे सब बहुत तेजी से जंगल की ओर जा रही थी। बसंती दीदी समझ गईं कि ये सब लेसाल गांव की महिलाएं हैं और जंगल में लकड़ी काटने जा रही हैं। बसंती दीदी ने उन्हें पुकारा।
1: अरे कहाँ जा रही हो बहनों? क्या तुम सब लेसाल गांव की हो?
2: हाँ, हम सब लेसाल गांव की हैं और जंगल जा रहे हैं लकड़ियाँ काटने।
1: बहन जरूर जाओ, लकड़ी भी लाओ, लेकिन देखो कच्ची लकड़ियाँ मत काटना।
3: वो भला क्यों? हा? तुम क्या कोई यहाँ की कलेक्टर लगी हो जो हमें ये फरमान सुना रही हो? अरे हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हाँ
1: मेरे लिए नहीं, अपने कोसी के प्राण बचाने के लिए आप सबको मेरी बात माननी चाहिए।
2: तुम्हारी बात से कोसी के प्राण का क्या रिश्ता?
3: हाँ।
2: हमें क्यों मूर्ख बना रही हो?
3: और क्या
2: है? आखिर तुम कौन हो, क्या चाहती हो?
3: हाँ।
1: आमा मैं लक्ष्मी आश्रम से आई हूँ। आप सबने तो सुना ही होगा कि इस बार कोसी के पानी पर सरकार ने पहरा लगा दिया है। गांव का कोई आदमी कोसी के पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं कर सकता। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर कोसी को बचाएं। यही बात समझाने के लिए मैं गांव-गांव घूम रही हूँ।
2: तुम्हारी बात में दम तो है बेटा, पर कोसी को हम कैसे बचा सकते हैं?
1: आमा इसका जवाब तेरे पास है।
2: मेरे पास?
1: हाँ तेरे पास। आमा तुम इन सबको बताओ कि कोसी नदी बनी कैसे है।
2: कोसी बनी कैसे? ये कैसा सवाल है? क्या तुम नहीं जानती कि हमारे पेनाथ जंगल के बांज बुरांश के घने पेड़ प्राकृतिक जल को संचित करते हैं और उसी से कोसी का जन्म हुआ?
3: और क्या?
1: बिल्कुल ठीक। ऐसे में अगर हम जंगल काटेंगे तो कोसी में पानी घटेगा या बढ़ेगा?
3: घटेगा।
2: अब हमें तुम्हारी बात समझ में आ गई। खाली हमारे समझने से क्या होता है, हम अकेले क्या कर सके हैं?
1: हम गांव के बाकी लोगों को ये बात समझा कर अपने जंगल के पेड़ों की जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं।
2: चलो इसकी शुरुआत हमारे ही गांव से करो।
3: अरे चलो चलो बसंती बहन, हमारे गांव चलो।
1: चलो चलो
3: चलो, हाँ जल्दी चलो, हम सबको बताते हैं।

बार जो चल पड़ा तो रुका नहीं। इस दिन बसंती बहन लेसाल गांव गई और वहां औरतों ने एक सभा बुलाई और झटपट एक महिला मंडल का गठन हो गया। फिर धीरे धीरे 20 गांव में महिला मंडल का गठन हो गया। बरासे घाटी के कफारी, बिजुरिया, धौलरा, गरुड़ा, सैल, खीराकोटा, कांटली आदि गांवों में महिला मंडल का गठन हो गया।

0: शुरू में तो पुरुषों ने महिला मंडल का विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी बात समझ में आ गई और वे भी अपना जंगल बचाने के अभियान में लग गए। अगस्त 2003 से आज तक इन गांव के लोगों ने कच्ची लकड़ी और हरी पत्तियां नहीं काटी।
1: पर रास्ता इतना आसान भी नहीं था। कोसी की जीवन रेखा पिनाथ जंगल केवल बरारो घाटी में नहीं पड़ता था, उसका कुछ हिस्सा लोध घाटी और बागेश्वर में भी पड़ता था, और वहां के लोग अब भी जंगल काट रहे थे। तब बरारो घाटी के महिला मंडलों ने फैसला किया कि पूरे इलाके में कोसी बचाओ जुलूस निकाले जाएं, सभाएं की जाएं।

0: बसंती बहन और गांव की संकल्प की धनी जुझारू महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि अगर आप ठान लें तो सब कुछ संभव है। उत्तराखंड की धरती ऐसी ही साहसी महिलाओं की धरती रही है और उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं बसंती बहन।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम संकल्प की धनी बसंती, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: जी, आप सब कुछ ही पलों में यानी ठीक 1 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार मराठी में, और उसके बाद होगा ठीक 1:05 पर कार्यक्रम हिट एंड हॉट। और इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं अपनी पसंद के गाने, जैसे कि बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी पसंद के गाने हमें भेज दिए हैं और वो गाने हमने क्यों भी कर लिए हैं, यानी एक साथ व्हाट्सएप के ज़रिए लाइन में लगा दिए हैं कि कौन सा गाना हम प्ले करेंगे। तो उनमें से एक गाना है, उस गाने की बहुत सारे श्रोताओं ने रिक्वेस्ट की है, तो मैं वही गाना प्ले करूंगी सबसे पहले। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए FM Rainbow

आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय ठीक 1:05 हुए हैं और ये समय होता है प्रोग्राम हिट एंड हॉट का। मैं हूँ RJ किरण वाले से मैं आपके साथ। जैसा कि हमने कहा कि हमने सभी श्रोताओं के गानों की लिस्ट रेडी कर ली है और उस गाने को हम प्ले करेंगे, उस गाने को

प्ले करेंगे जिस गाने को ढेर सारे लोगों ने पसंद किया है, जैसे कि प्रमोद चिंचोलकर उमरी अकोला से, अमित भगत मालेगांव से, पंकज मोहोड़ अमरावती से, और साथ ही रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से उनका पूरा परिवार, विजय महोबिया, कविता विशाल, सोनू मोनू, सपना शिव सलोनी और पेंडर बाबू, इन सभी लोगों ने इसी गाने को पसंद किया है। तो चलिए सुनते हैं यही गाना।

चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की ओर। इस गाने को सुनना चाहते हैं विजेंद्र घटोल अकोला से और साथी हितेंद्र दास आसाम से।

इस समय ठीक 1:21 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो। तो साथ ही हम बता दें, जो भी आपने गाना सुना पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, इस गाने को और भी हमारे कई श्रोताओं ने पसंद किया है। राजेंद्र परमार जी ने भी इसे गाने को पसंद किया और साथ ही एक और श्रोता है जिनका नाम है मंगेश जोशी रोहा रायगढ़ से, उन्हें भी ये गाना बहुत पसंद आया। और हरजिंदर छिंदा जसवीर, इनका पूरा परिवार ये गाना सुन रहे हैं, सुना और उन्हें ये गाना बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि हमारा नाम अपने इस गाने में शामिल कर लीजिए, तो हमने आपका नाम शामिल कर लिया है। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, इन सभी ने इस गाने को पसंद किया। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की ओर।

इस समय ठीक है 1:40 हुए हैं, तो चले कार्यक्रम हिट एंड हॉट को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये गाना। इस गाने को पसंद किया है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता गौड़ और साथ ही ग्राम दुल्हापुर यूपी से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, सीमा, काजल, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, यानी इनका पूरा परिवार ये गाना सुनना चाहता है। और तो चलिए सुनते हैं ये गाना, बहुत ही खूबसूरत है गाना जो आप सुनने वाले हैं।

इस समय ठीक 1:45 हुए हैं और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद चैनल FM रेनबो और प्रोग्राम चल रहा है हिट एंड हॉट। हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो सुबह से हमें सुन रहे हैं, जैसे कि रजनीकांत पाटिल वाड़वड़ से हमें सुन रहे हैं, शुभदा जी है, चेतन कुमार है बिहार से, अरुणा जी है खार से, और साथ ही शुभदा जी भी हैं, शुभलक्ष्मी जी भी हैं, संदीप कुमार मक्कर जी यानी इनका पूरा परिवार जलंधर से हमें सुन रहा है, और मेहर अरोरा श्री गंगानगर राजस्थान से, इनका पूरा परिवार ममता कीर्ति भूमिका सभी हमें सुन रहे हैं। साथ ही प्रदीप अनंत कृष्णन जी भी हमें सुन रहे हैं और उन्हें गाने बहुत पसंद आ रहे हैं। और है एक श्रोता जी हैं जिनका नाम है गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से हमें सुन रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं ये गाना, बहुत ही खूबसूरत है ये गाना, जिस गाने को

अभी जो गाना आप सुन रहे थे इस गाने की फरमाइश की थी फिरोज सिंगनपुरिया जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की ओर। इस गाने को सुनना चाहते हैं राकेश माथुर पुणे से।

तो हम इसी गाने के साथ आज का ये कार्यक्रम यानी हिट एंड हॉट यहीं समाप्त करते हैं। ठीक 2 बजे आप सुनेंगे मिड डे न्यूज़ अंग्रेजी में और ठीक 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार हिंदी में। ये समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। तो सुनने वाले सभी श्रोताओं को मैं कहूँगी, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और अपनों के साथ रहो, क्योंकि अपने ही काम आते हैं।

0: 5 पद्म भूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसी प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: मैं रात का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरोड़ी का ही होता है, तो मरोड़ी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सीख के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी दस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
1: ये कार्यक्रम आज FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
1: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
4: कश्मीर का राष्ट्रध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं रहे।
1: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
4: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी NCCF और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से ना आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है, और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और NCCF ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
1: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा ये संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
5: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स डॉट इन दृष्टि ईआरपी और नाफेड कल्याण ये चार पहलों की शुरुआत की तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद हो

0: की कगार पर आ गया था, आज नाफेड इस सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रेर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: घटना स्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। एसआईटी के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा

0: करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार तीसरे दिन भी बारिश हो रही है।
1: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश होने से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। एफआईएच प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Swani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: न्यूज ऑन एआईआर ऐप और 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। शाम के ठीक 5:02 का समय है और ये समय होता है कार्यक्रम लव यू जिंदगी का, और आज मैं शुभांगी हूँ आपके साथ।

सुन रहे आप लव यू जिंदगी 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। बारिश की बूंदें दस्तक दे रही है, कहीं कहीं थोड़ा सा मूड में भी बरस रही है, लेकिन अब तक जो सोच रही थी कि आऊं कि नहीं, ये जो उसका चल रहा था वो अब शायद फैसला हो गया है और बस वो आ गई है। ये होता है ना कि बारिश की बूंदें, पहली बूंदें जब बरसती हैं, आजकल तो हम बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं, लेकिन जब जब इसका इंतज़ार होता है और जब पहली बारिश होती है तो कितनी ज़्यादा खुशी होती है। और वो सौंधी सौंधी खुशबू, मिट्टी की जो खुशबू आती है, उससे तो ऐसा लगता है कि बस ऐसा ही कोई इत्र अगर मिल जाए तो मज़ा आएगा। कई लोगों को बारिश में भीगना भी अच्छा लगता है। बारिश में भीगना वैसे भी बचपन में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वही कायम रहता है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो एक सोच होती है ना, हम जो सोचते हैं कि नहीं नहीं अभी इस उम्र में कहाँ, नहीं अभी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हमें ये सब सोचने लगता है ना हम कि नहीं फिर सर्दी लगेगी, ये होगा वो होगा, बचपन में ये सब हम नहीं सोचते हैं, और इसीलिए उस समय जो मज़ा आता है ना वो फिर बाद में हम ही शायद खो देते हैं ना। लगता तो है कि जाएं चलो, लेकिन हम सोचते बहुत हैं जब बड़े हो जाते हैं तो उम्र बीच में आती है ऐसा लगता है, नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं लगना चाहिए, ऐसा भी लगता है। अरे यही तो है अपने आप को समय देने का ये कार्यक्रम है, इस समय जो आता है लव यू जिंदगी। तो कभी ऐसा सोचा है कि बारिश में भीगे बहुत साल हो गए नहीं भीगे हैं, या ऐसा ही लगा है नहीं जाना चाहिए? ऐसे कुछ जो बातें होती रहती है, कई बार अपने आप से बातें होती रहती है, वो सब इस बहाने, इस कार्यक्रम के बहाने बस कर लीजिए और कहिए जिंदगी से लव यू।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: जिंदगी मिलके

5:27 हो चुके हैं, सुन रहे हैं आप ये सारे गाने जो बरस रहे हैं, बाहर बारिश जैसे भी हो, कहीं जगह हो भी ना भी, लेकिन या रेनबो पर हमेशा ही ये गाने बरसते रहते हैं आपके लिए, बारिश होती रहती है, हम करते रहते हैं आपके लिए। हम जो एक सोचते हैं ना कि हर चीज़, अभी अभी जैसे मैंने आते हुए सुना, ऐसे कई बार आप भी तो देखते हैं हमारे आसपास, तो आते आते मैं कुछ बातें जो सुन रही थी तो ऐसा लगा मुझे कि हाँ, हम बहुत सोचते हैं उम्र को लेकर कि नहीं इस उम्र में क्या करना है, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, अपने आप को हम बहुत ज़्यादा सीमित कर देते हैं। और ऐसे लगता है कि अगर किया भी तो क्या बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा, या कोई कुछ कहेगा तो नहीं, ये सबसे पहले दिल में होता है कि नहीं, मतलब हम क्या चाहते हैं, हमें क्या चाहिए, इससे ज़्यादा हम ये सोचते हैं कि नहीं अगर हम ऐसा करें तो कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कहेगा, आती है ना सारी बातें हमने, और ये नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इसीलिए ये जो कार्यक्रम होता है, जो अपने आप के लिए समय देने का, लव यू जिंदगी कहने का कार्यक्रम हाँ, लव यू जिंदगी कहने का ये समय अपने आप को देना है, और इसीलिए हम रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, हमारी अपनी ज़िंदगी से जुड़ी है कुछ बातें, छोटी छोटी बातें ही सही, लेकिन उन छोटी छोटी बातों में से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सोच कर देखिए,

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो।
1: बेवजह, बेपरवाह, बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक।
0: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल।
1: म्यूजिकली योर्स।

सुन रहे आप लव यू जिंदगी, अपने आप से अपनी जिंदगी से लव यू कहने के लिए क्या सोचना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वैसे एफएम रेनबो यानी सतरंगी, ये सारे रंग लेकर हम आते हैं, इंद्रधनुष लेकर आते हैं आपके लिए, इन गानों का भी, हमारी बातों का भी। और ऐसा होता है ना, किसी के कभी कभी कुछ कह देने से हम जरूर इस पर सोचने लगते हैं, या हम जरूर इस पर सोचेंगे, कम से कम ये तो हम सोचते हैं। कहते भी हैं ना हम किसी से कि कोई अगर कोई हमें सुझाव दे दे, कभी इस एंगल से देखा है, कभी इस नज़रिए से देखा है किसी चीज़ को, तो हमें ऐसा लगता है ना कि अरे हाँ, ये तो कभी मैंने सोचा नहीं। लेकिन इस बात पर सोच विचार ज़रूर करना चाहिए, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है। तो यही बात होती है कि कोई कुछ हमें छोटे से बातों में ही सही, लेकिन कुछ दे जाता है। और कभी ऐसा भी होता है कि हमसे कुछ ले भी जाता है, वो होती है सोच, वो होता है कोई विचार, वो होता है उत्साह। हम जब एक दूसरे से बात करते हैं तो हमारी एनर्जी जो है, हमारा उत्साह जो है, वो हम दूसरों तक पहुंचाते हैं और उसे एक नई एनर्जी मिल जाती है। क्यों किसी के मिलने के बाद हमें खुशी होती है, क्यों किसी के मिलने के बाद हमारा मूड ठीक हो जाता है, क्यों किसी की बातों को सुनने के बाद, या कोई फिल्म देखने के बाद, या कोई गाना सुनने के बाद हम पल भर के लिए सब कुछ भूल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो भी कुछ हम सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, उसमें कोई एक एनर्जी होती है जो हमें अपने आप से और उस सामने वाली चीज से जोड़ती है, भले वो संगीत हो, कोई कला हो, या किसी की बातें हो, उससे हमें जोड़ती है। ये एनर्जी का लेना देना ये चलता रहता है, जो हमें पता भी नहीं होता है। ऐसी छोटी छोटी हल्की फुल्की बातों से हमारी सोच बदल भी जाती है कभी कभी, और कुछ अच्छा हमें मिल जाता है कि हाँ, ये मैं कब से ढूंढ रही थी या ढूंढ रहा था, और अब मुझे मिल गया है। वैसे ही कुछ होता है आपका एफएम रेनबो सुनते हुए भी। आफ्टर ऑल ये क्या है, रेनबो यानी इंद्रधनुष है, बेसिकली योर्स।

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो।
1: बेवजह, बेपरवाह, बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक।
0: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल।
1: म्यूजिकली योर्स।
2: दिल से सुनती आये दिल की दास्तां, जो लफ्जों में नहीं हो बयां।
3: सुन रहे आप एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर, और प्रोग्राम चल रहा है लव यू जिंदगी एफएम रेनबो, म्यूजिकली योर्स। ये जो सारे गाने हम सुनते हैं, ये जो म्यूजिक हम सुनते हैं, वो कितना कुछ देकर जाता है हमें। इन सब ने जो काम कर रखा है अब तक, जो फिल्में भी हम देखते हैं, गाने हम सुनते हैं, तो गीतकार हैं, संगीतकार हैं, गायक हैं, इतना ज़्यादा खुशी देकर गए हैं ये सब लोग हमें। और इसीलिए गाने सुनते हुए कभी कभी ये होता है ना कि कोई गाना सुनकर आपकी कोई याद जाग जाती है, और कभी वो यादों का जो बॉक्स खुल जाता है, वो एक पिटारा खुल जाता है, उसमें अलग अलग मूड्स की यादें रहती है ना। और वो गाना जैसे जैसे हम सुनते जाते हैं और एक एक याद ताज़ा होती जाती है, तो एक वो लड़ी बन जाती है, जैसे गीतों की एक लड़ी, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक वो आती रहती हैं, आती रहती हैं। और ये पता भी नहीं चलता कि ये सारे गाने सुनते हुए हम कहाँ की सैर करके आए हैं, होता है ना इससे। और ये भले ही छोटी छोटी बातें लगती हो, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले भी कहा कि छोटी बातें ही बहुत ज़्यादा असर छोड़ जाती है। कभी अगर नहीं सोचा है इस बात पर, वैसे सभी सोचते हैं ना नहीं सोचा ऐसा कभी होता है, लेकिन फिर भी कभी ऐसा हुआ हो कि नहीं सोचा है मैंने इस बात पर। आजकल ये हो भी गया है ना कि क्या छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है, ऐसा आजकल होता है ना। ज़माने के साथ साथ सोच क्या बदलती जा रही है नहीं पता, इस पर हम बात भी नहीं करें तो बेहतर है। हम क्योंकि अपने लिए सोच रहे हैं, लव यू जिंदगी, ये हमारी अपनी ज़िंदगी से प्यार करने के लिए थोड़ा सा समय जो निकालना है, इसके लिए है, हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो क्या हमारी सोच हम बदल सकते हैं, ये ज़रूरी है, ये मायने रखती है चीज़। तो अपने आप को थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं, धीरे धीरे ही होती है हर बात वैसे भी, थोड़ा सा अगर होता है तो करें, और अगर बिल्कुल भी नहीं होता है तो ये भी नहीं सोचना कि मुझसे तो कुछ भी नहीं होता है। ये सोचकर डिप्रेशन भी आजकल बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाता है, किसी हर छोटी सी बात से भी डिप्रेशन आ जाता है। तो ये भी ना हो, वो भी ना हो, आप कहोगे कि ऐसे क्या किसी को आता है कि हर किसी भी चीज़ में बैलेंस रखे और वैसे ही जिए, ये तो फिर आदर्शवादी हो गया। तो ऐसे ऐसे भी नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन हमारी अपनी तरह से हम जितना कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, अपने आप को हम जज करना जो शुरू कर देते हैं ना, बस वो नहीं करना है, बस फिर सब कुछ आसान हो जाता है। ये नहीं किया तो वो मैं ऐसी हूँ, या वो नहीं किया तो मैं वैसी हूँ, ये सब नहीं सोचना है बस, और कुछ नहीं है ना। छोटी सी तो बात है जो होती रहती है लव यू जिंदगी में। म्यूजिक है योर्स एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

अब से कुछ ही देर में ठीक 6:05 पर आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद 6:15 पर मैं आ जाऊंगी लेकर कार्यक्रम अंदाज़े भैया। तो बस सुनते रहिए, हमारे साथ रहिए 107.1 आकाशवाणी मुंबई FM रेनबो।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: News on AIR app और 107.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM Rainbow चैनल। शाम के ठीक 6:15 का समय है और कार्यक्रम अंदाज़े बयां में आज सुबह की आपके साथ।
2: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी मुंबई एफएम रेनबो म्यूजिकल यूर्स प्रोग्राम चल रहा है अंदाज़े बयां, बयां करने का अंदाज। हम सभी को कहानी सुनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, जब हम छोटे होते हैं तब भी, बड़े होने के बाद भी। जब हम छोटे होते हैं तो दादा दादियों से, मम्मी पापा से या घर के किसी बुजुर्ग से हम कहानी सुनते हैं, कहानी बताई जाती है और हम उसमें धीरे धीरे धीरे धीरे ऐसे खो जाते हैं। उसका जो जादू चलता है वो बस बताया नहीं जा सकता, बयां नहीं किया जा सकता। कहानी बयां हो रही होती है फिल्म की भी, सिनेमा भी तो बोलता है, बहुत ज़्यादा बोलता है। एक कहानी लेकर आता है सिनेमा बनाने वाला, हम तक पहुंचाई जाती है वो कहानी किसी सिनेमा के ज़रिए। उस सिनेमा में कहानी तो होती है, गाने भी होते हैं और वो गाने भी छोटी सी ही सही लेकिन कहानी बताते हैं। अंदाज़े बयां सिनेमा का भी, कि सिनेमा क्या बोलता है, क्या कहना चाहता है, उसमें जो गीत लिए जाते हैं वो क्या कहना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें आज अंदाज़े बयां में।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
4: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
3: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
4: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक,
3: सुनते रहिए 107.1 MHz आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल,
4: म्यूजिकली योर्स।

सुन रहे हैं आप अंदाज़ में 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई फिल्म रेनबो पर और अंदाज़ बयां में आज कुछ फिल्मों की बात। फिल्में क्या कहती हैं, फिल्मों का अंदाज़ बयां क्या होता है। देवानंद और नूतन की जो फिल्म आई थी तेरे घर के सामने, तो उसमें ये एक तो रोमांटिक है, लेकिन सिर्फ रोमांटिक नहीं है, रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ऐसा हम कह सकते हैं इसे। कुछ ऐसी बातें जो भी इसमें बताया गया है, बहुत हल्के फुल्के तरीके से बताया गया है कि जो आपस में पेरेंट्स की, हम हीरो और हीरोइन दोनों के जो पिता, हीरो के भी पिता और हीरोइन के भी पिता जो है, उनके आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, इतना ज़्यादा झगड़ा हो चुका है उनका, लेकिन फिर भी इनका जो हीरो हीरोइन का जो प्यार है वो कैसे पनपता है। फिर ये जो फिल्म का नाम है ना, तेरे घर के सामने, जो एक दूसरे के घर के सामने घर बनते हैं, और ये बनाने वाला एक ही है, वो आर्किटेक्ट और वो हीरो है, और वो ये पता नहीं चलने देता है पूरे फिल्म में कि उसी ने ये किया है, और जब ये पता चलता है तब जो कुछ होता है उसके बाद क्या होता है। ये पड़ोसी बन जाते हैं जो बहुत ज़्यादा दुश्मनी रखते हैं ना आपस में, ये हीरो और हीरोइन दोनों के जो पेरेंट्स हैं, तो उन्हें समझाना और वो कैसे प्यार से रहना चाहिए, ये सब जो इसमें आया है कि सद्भाव से रहने का जो विचार होता है उसे बढ़ावा देती है ये फिल्म। पुरानी चीज़ें नई चीज़ें इनका कॉम्बिनेशन है, वो कैसे करना है तो उसको खूबसूरत बनाने के लिए नए पुराने का कॉम्बिनेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी चीज़ को अगर खूबसूरत बनाना है तो नए विचारों को हमेशा ही एक बढ़ावा देना ज़रूरी होता है जहाँ तक वो मुमकिन है, और पुराने जो कुछ तरीके होते हैं या कुछ विचार होते हैं उनमें से हर चीज़ अच्छी नहीं है ये भी नहीं होता है। दोनों का जो बैलेंसिंग है वो ज़रूरी होता है, वो कैसे, वो इसमें बताया गया है, और ये एक बहुत खूबसूरती से ली गई एक प्यारी सी फिल्म है, और इतनी रोमांटिक फिल्म होते हुए भी इसमें ये जो बात बताई गई है ये है अंदाज़े बयां फिल्मकारों का, ऐसा मुझे लगता है, और इसीलिए आज मैं कुछ फिल्में ऐसी लेकर आई हूँ।

यहाँ जब पता चलता है ना इस फिल्म में तेरे घर के सामने की बात हो रही है, तो जब हीरो और हीरोइन दोनों के घर में ये पता चलता है कि हमारे घर जो पहले से दुश्मनी थी और एक दूसरे के सामने घर बांधे गए हैं और अब यहाँ हर रोज उठकर मुंह दिखना पड़ेगा सामने, ये क्यों रहने को आया, और ऐसे वो जब जब सब एक मूड खराब हो जाता है दोनों ही घरों में, तो समझाने के लिए ये हीरो जो है वो ये गीत गाता है जो अभी मैं सुनवाने वाली हूँ। कोई विषय किस तरह से पहुँचाया जाता है वो होता है फिल्मकारों का अंदाज़े बयां, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हर फिल्म जो बोलती है वो भी अंदाज़े बयां मैं आपको लेकर आऊँ, तो इसलिए आज मैं लेकर आई।

फिल्म 2 बीघा जमीन, जिसका ये गीत अभी आप सुन रहे थे, किसान की बात बताता है, किसान की कहानी कहता हुआ आता है। यह सन्मय फिल्म बताती है कि किसान का जीना कैसे होता है। धरती पहने की हरी चुनरिया बन के दुल्हनिया, ये जो उमंगे जगी है, हरियाला सावन ढोल बजाता आया है, उससे उसकी जो आशाएं जगी हैं उन

आशंकों से, उन आशाओं से, वो खुशी से जो गा रहा है, वो जो सपने देख रहा है, हरे धान के नैनों में सपने नाच रहे हैं, ऐसा जो कहा है इस गीत में, तो ये जो फिल्म है ये बताती है कि उसका जीना कैसे होता है और कितनी मुश्किलें होती हैं। अकाल आता है, जब ये अकाल पड़ता है तो क्या होता है, जब पैसा नहीं है उसके पास तब क्या होता है, गांव छोड़कर शहर की ओर जाने लगते हैं तब क्या होता है, उसके साथ उसकी ज़िंदगी में क्या होता है, वो जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता, या ना चाहते हुए भी कुछ करना चाहता है, उससे जो मुसीबतें आती हैं, तो वो अपनी ज़िंदगी में आने वाली इन सारी जो घटती हुई घटनाएँ हैं वो सब बताती है ये फिल्म। और इसमें ये जो गाना है जो अभी मैं सुनवाने जा रही हूँ, शैलेंद्र जी का लिखा हुआ, तो बहुत बहुत खूबसूरत बात कही है, एक खूबसूरत फिल्म और उसमें एक खूबसूरती से कहते हुए, कुछ कहते हुए गाने आते हैं तो वो कैसे होते हैं। कुछ तो निशानी छोड़ जा, क्योंकि मौसम बीता जाए, अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कितनी बड़ी बात है।

0: FM रेनबो को रंगी बनाएंगे। सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो,
1: म्यूजिकली योर्स।
0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
2: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
2: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक,
0: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल,
2: म्यूजिकली योर्स।

सुन रहे हैं आप 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर FM रेनबो पर कार्यक्रम अंदाज़े बयां, और आज कुछ फिल्मों का जिक्र हो रहा है कि फिल्में क्या बोलती हैं, क्या कहना चाहती हैं, फिल्मों का अंदाज़े बयां क्या है। इसके बाद श्री 420, इसका तो इतना मतलब राज कपूर का स्टाइल एक तो जो आम आदमी को हमेशा ही वो दर्शाते रहे कि उसकी ज़िंदगी कैसी होती है, और श्री 420 में जो उन्होंने बताया है अमीर गरीब, ये तो विषय रहा ही है हमेशा ही हमारी फिल्मों में, लेकिन उसको देखने का नज़रिया हर किसी का अलग अलग है, और इसीलिए इस विषय को लेकर आने वाली हर फिल्म अलग कुछ अंदाज़े बयां लेकर आती है। तो श्री 420 क्या कहती है ये फिल्म, इसमें जो हीरो का एक ग्राफ दिखाया गया है ना, वो शुरू से लेकर एक आम आदमी अगर कुछ गलत तरीकों को अपनाने लगे किसी को देखकर या किसी के साथ रहकर, तो वो क्या करता है, और उसके बाद उसको जब एहसास होता है तब वो क्या करता है। इसमें ये जो एक एथिक्स होते हैं, जो वैल्यूज होती हैं, बुनियादी सिद्धांत, विश्वास, उसका जो एक अलग अलग तरीके से सोचना दिखाया गया कि आम आदमी कैसे सोचता है, और जो बहुत ज़्यादा अलग वर्ग से आते हैं, जो इसमें है विषय गरीब और अमीर, तो वो हीरो के जीवन में जो अमीर लोग आते हैं वो कैसा सोचते हैं, उनकी दुनिया कैसी है, ये बताते हुए जो कुछ ये फिल्म कहती है वो हीरो जो जो एक महसूस करते जाता है पूरी फिल्म में, जो उसका ग्राफ दिखाया गया है, वो जो जर्नी है बहुत खूबसूरती से बताया है, बहुत कमाल का बताया है।

अंदाजे मियां को समेटने का वक्त हो चुका है अब से कुछ ही देर में, ठीक 7 बजे आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद 7:10 पर कार्यक्रम हम तुम लेकर आऊंगी। बस सुनते रहिए हमारे साथ, रही 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई FM रेनबो।

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: 107.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई FM Rainbow, musically yours. ये समय है कार्यक्रम हम तुम, इस कार्यक्रम का और शुभांगी आज आपके साथ. आपके लिए आज सवाल लेकर आई हूँ फिर एक बार. आपको ये बताना है कि आपने, हाँ बिल्कुल फटाफट मैं आपसे सवाल पूछ लेती हूँ ताकि आप लोग मुझे उतनी ही जल्दी से अपने जवाब भेज सके. तो सवाल ये है कि आपने आखिरी खत कब लिखा था, या आपको आखिरी खत कब मिला था. खत लिखने का सिलसिला जो रुक चुका है, टूट चुका है, वो पहले के ज़माने में जब हम खत लिखते थे, जब मोबाइल नहीं था तो SMS भी नहीं भेज सकते थे, ईमेल फिर SMS और अब तो व्हाट्सएप. तो उससे हुआ है कि वो जो लिखावट होती थी उसमें जो फीलिंग्स हमें दिखती थी, महसूस होती थी, वो क्या आज के इस छोटे से मैसेज में हमें मिलती है, नहीं मिलती है, किसका कहना है, मिलती है किसका कहना है, या मिला जुला भी हो सकता है. लेकिन वो खत लिखने का जो ज़माना था वो एक जो अपना मज़ा था वो कुछ और ही था. तो आपने ऐसा खत आखिरी बार कब लिखा, या आपको कब मिला किसी का लिखा हुआ खत, वो आखिरी साबित हुआ और उसके बाद ज़माना ही बदल गया तो खत लिखने का सिलसिला ही टूट गया. हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071, 8657661071.

आप सुन रहे कार्यक्रम हम तुम, और मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, जरा फिर एक बार दोहरा दूं मैं कि आपने कब आखिरी खत लिखा था। वो जमाना बीत गया है, खत लिखने का जो एक जमाना था वो आदत भी अब छूट गई है कि कुछ लिखना हो तो हमें वो वैसे नहीं होता है जैसे हम पहले लिखते थे। तो ये सिलसिला जो रुक गया है, टूट गया है, तो क्या आपको याद है कि आखिरी खत किसका आया था या आपने किसी को भेजा था? दो पंक्तियों की चिट्ठी ही सही, लेकिन क्या वो याद है आपको कि कब लिखा था या कब किसी ने आपके लिए लिखा था? हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071। ये खत आपने हमें भी लिखा हो सकता है तो याद कीजिए, या पहली बार कब लिखा था ये अगर याद है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071।

0: हवाओं पे लिख दो
1: ओहो, खत लिखने के बाद क्या छेड़ी और बहुत सारी यादें ताज़ा होने लगी हैं आपकी। प्रदीप अनंत कृष्ण ने कहते हैं कि उन्होंने 1987 में आखिरी खत लिखा था, और वैसे भी ये लिखते ही हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं ऐसा वो कहते हैं कि उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है आज तक। और सुशील यादव, रेणु यादव कहते हैं कि शादी और सगाई के बीच ज़्यादातर पत्र लिखे जाते थे, लिखे गए हैं जो आज भी याद है। और आखिरी पत्र जो उन्होंने लिखा था वो रेडियो स्टेशन के लिए ही लिखा था, फरमाइशी प्रोग्राम के लिए उन्होंने खत भेजा था, अपनी फरमाइश भेजी थी और वो पूरी हुई थी। ऐसी तो सुरीली यादें हैं भाई आपकी, और बहुत सारी यादें जैसे जैसे मैं पढ़ती जा रही हूँ तो मुझे भी मज़ा आ रहा है सब पढ़ते हुए। ये बात ही कुछ और होती है ना कि ऐसी यादें ताज़ा हो रही हों, वो सब जो जो लिखा है किसी ने हमारे लिए या हमने किसी के लिए, उनमें एक जो महक होती है वो अपनेपन की, वो बहुत ज़्यादा दिल को ना ऐसी एक याद देकर जाती है, एक ऐसी ख्वाहिश देकर जाती है कि अब वो क्यों नहीं है। लेकिन वो ज़माने के साथ साथ बदलते आए हैं हम, और ज़माने के साथ चलना भी चाहिए। फिर भी आज भी तो हम लिखते हैं, खत ना सही, मैसेज सही, लेकिन हम लिखते हैं, बिल्कुल किसी को याद करते हैं। खत लिखने के पीछे या किसी को मैसेज भेजने के पीछे भी हम उसको याद करते हैं, हम उसको भूले नहीं हैं, ये भी तो हम बताते हैं हमारी बात से।

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
2: आप सुन रहे कार्यक्रम हम तुम 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी मुंबई फिल्म रेनबो पर शुभांगी आजाद के साथ। और मैंने आपसे सवाल पूछा है कि वो आखिरी खत कौन सा है जो आपको मिला, किसी का लिखा हुआ या आपने किसी को लिखा। वैदेही कहती है कि 2013 में उन्होंने आखिरी खत लिखा था और स्पीड पोस्ट से भेजा था। वेरी गुड। और वो बर्थडे ग्रीटिंग्स भी बनाती थी, अभी भी बनाती हैं और आज भी खत लिखती हैं और ग्रीटिंग्स भी भेजती है। वेरी गुड। अरे वाह वैदेही जी, आजकल ये सब करने वाले लोग बहुत कम हो गए हैं, बहुत ही गिने चुने। राकेश माथुर जी कहते हैं कि उन्होंने 1990 में अपने दादाजी को खत लिखा था, वो आखिरी खत था। ये हॉस्टल में रहते थे पढ़ने के लिए, तो वो दूर रहते थे दादाजी से, तो इन्होंने खत लिखा था और उसके बाद से फिर ये जो सिलसिला टूटा है वो बस वैसा ही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये फीलिंग्स बहुत लोगों की होंगी। आरती जी कहती है कि काश कि ख़त लिखने का ज़माना वापस आ जाए। ओहो आरती जी क्या बात है। और एक ज़माना था जब हमें डाकिये का इंतज़ार रहता था, बिल्कुल रहता था, और वो गाना भी मैंने सुनवा दिया है। और इन्होंने जो आखिरी ख़त लिखा था वो उनकी सहेली, उनकी दीदी जो कहती है वो उनको, तो वो उनकी सोसाइटी में रहते थे और वो जब विदेश चली गई तो इन्होंने ख़त लिखा था। और एक उनकी जो सहेली है वो भी जब विदेश में गई तो इन्होंने ख़त लिखा था और साथ में बारिश का जल भी भेजा था, ये कहती है। क्या बात है, ये जो हमारी फीलिंग्स छुपी होती है ना एक ख़त में, क्या क्या नहीं होता, कितनी सारी जज्बात होती हैं उसमें। इसीलिए उस ख़त की अहमियत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और आज भी जब वो यादें ताज़ा होती हैं तो वो सारी बातें आज भी उतना ही हमें खुशी देकर जाती है कि नहीं। तो इसके बाद आप क्यों रुके हैं, आप भी तो हमें बताइए कि वो कौन सा साल था, वो कौन सा समय था जब आपने आखिरी ख़त किसी को लिखा या आपको किसी ने ख़त लिखा और उसके बाद यह सिलसिला टूट गया, रुक गया, फिर भी वो यादें ज़रूर ताज़ा है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071।

0: सुन रहे हैं आप कार्यक्रम हम तुम, और मैंने आपसे पूछा है कि वो कौन सा आखिरी खत साबित हुआ जो आपने लिखा या आपको किसी ने लिखा और उसके बाद ये सिलसिला टूट गया, रुक गया। विजेंद्र गाठोड़ कहते हैं कि 2010 में उन्होंने आखिरी खत लिखा था और अकोला में रहते हैं वो, तो अकोला आकाशवाणी को उन्होंने ये खत लिखा था और कहते हैं कि इस वक्त वहाँ अकोला में बारिश हो रही है। ओहो विजेंद्र जी, तो बारिश मेहरबान हो गई आखिर आके यहाँ। अब इसके बाद पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर, ये कहते हैं कि उन्होंने भी आकाशवाणी को ख़त लिखे हैं। 1980 से ये सिलसिला उनका चला आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है, आकाशवाणी से जो प्यार है आप लोगों का ये इसे पता चलता है। और हमारी भी यादें ताज़ा होती हैं, बिल्कुल होती है, कि जहाँ यहाँ मुंबई के इस एफएम रेनबो के लिए जब आप ख़त लिखते थे तो हम वो पढ़ते थे और ख़त आपके गीत हमारे ये प्रोग्राम हुआ करता था, तो वो यादें हमारी ताज़ा हो गई हैं। रघुनाथ खनुकर कोल्हापुर से, रघुनाथ खनुकर कहते हैं कि 1987 में वो जब पढ़ रहे थे, कॉलेज में थे, तो घर से दूर थे पढ़ाई के लिए, तो वो अक्सर घर पर ख़त लिखकर भेजते थे। ओहो, ये तो बहुत ज़रूरी बात होती है, जब हम पढ़ाई के लिए दूर रहते हैं तो घर वाले अक्सर चिंता में होते हैं कि ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कैसा है क्या है, तो ये ख़त लिखकर बताना बहुत ज़रूरी भी होता है, आज भी होता है कि बता दे कि हम ठीक हैं, कैसे हैं, क्या है। प्रणव शिंदे कहते हैं कि उनके जो कज़िन्स हैं वो यहाँ नहीं रहते, ये मुंबई में रहते हैं प्रणव जी, और इनके जो कज़िन्स हैं वो गांव में रहते हैं और उनसे फ़ोन पर तो बात होती रहती है, लेकिन 15 दिन में एक बार मैं और मेरी बड़ी बहन ख़त लिखते हैं और जवाब में मेरे कज़िन्स भाई बहन का भी गांव से ख़त आता है, और अभी अभी 15 दिन पहले ही ख़त लिखा है। ओहो, तो आपके लिए तो ये सिलसिला टूटा ही नहीं है, रुका ही नहीं है प्रणव जी, क्या बात है, कीप इट अप, यही कहूँगी मैं। 7:40 हो चुके हैं और ये घड़ी बहुत तेज़ से भाग रही है। इसके बाद गाना भी तो है, आपका इंतज़ार कर रहा है। वैसे आपको एक बार ज़रा व्हाट्सएप नंबर बता दूं, 8657661071, 8657661071, ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, और आपको बताना है कि वो कौन सा आखिरी ख़त हुआ जो आपने किसी को लिखा था या किसी ने आपको लिखा था, या दो पंक्तियों की चिट्ठी ही सही लेकिन किसी ने आपको भेजी थी या आपने किसी को भेजी थी और उसके बाद यह सिलसिला रुक गया, टूट गया किसी भी कारणवश, लेकिन ये आपको बताना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर मैंने बता दिया है, तो बस इंतज़ार किस बात का, बता दीजिए हमें।
1: क्या कहा?

0: यार मुझे कुछ जल्दी भेजना है, कोई सुपर फास्ट ऑप्शन है क्या?
1: अरे बिल्कुल, इंडिया पोस्ट लाया है 24 स्पीड पोस्ट, मतलब अगली ही तारीख तक तेज डिलीवरी।
0: ओहो, यानी जरूरी डॉक्यूमेंट हो, पार्सल हो, सब कुछ तुरंत पहुंच जाएगा।
1: हाँ भाई, ट्रैकिंग भी रियल टाइम और रेट भी पॉकेट फ्रेंडली, और सबसे जरूरी OTP आधारित सुरक्षित डिलीवरी। बस भरोसा रखो इंडिया पोस्ट पर।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें या विजिट करें indiapost.gov.in।
3: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
4: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
3: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
4: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक,
3: सुनते रहिए 107.1 MHz आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल,
4: म्यूजिकली योर्स।

बहुत सारे लोगों ने हमें जवाब भेजे हैं। प्रसन्न चक्रवर्ती, योगेश महाले, श्यामला प्रकाश, प्रणीत सोंडावले, मुकेश कश्यप, चेतन कुमार, योगेंद्र भोइनकर, शुभदा जी, डॉक्टर अंजू, बहुत सारे हमारे श्रोता है जिनके जवाब में शामिल नहीं कर पाई हूँ। हमारे पास इतना समय नहीं है, लेकिन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और वैसे इस वक्त मुंबई में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, ऐसा आप सब कह रहे हैं, तो जिसका हमें इंतज़ार था वो आखिर आ गई है, इस बात की तो हमें खुशी ही है।

फिलहाल यहाँ शुभांगी चाहेगी आपसे इजाजत, बस सुनते रहिए, हमारे साथ रहिए 107.1 आकाशवाणी मुंबई FM रेनबो। ठीक 8 बजे आप सुनिए कार्यक्रम रॉक विद चॉप।

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
1: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक।
0: सुनते रहिए 107.1 MHz आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल,
1: म्यूजिकली योर्स।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में

0: सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
2: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूडी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
3: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन, गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच

0: समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
1: रास लफान परियोजना में जो वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
0: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ विपक्षीय बैठकें की।
1: ब्रिक्स NSA की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे NSA की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
1: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
0: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सेसेक बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदिनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार CUET के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात $1.84 ट्रिलियन तक पहुंच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की और बढ़ना चाहिए।
2: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण,

0: गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिकड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम साइरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says BRICS has vital role in deepening security cooperation and addressing challenges like terrorism and cyber security. President Draupadi Murmu presents Padma Awards at 2nd Civil Investiture Ceremony. Journalist P. Narayanan, tennis legend Vijay Amrit Raj, actors Mammootty and R. Madhavan and singer Alka Yagnik among renowned recipients. Government says it is making advanced preparations to help farmers deal with the possible impact of weak monsoon caused by El Nino. IMD issues orange alert for thunder squall in Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Indian men's hockey team beat arch rivals Pakistan 4-3 in opening match of FIH Pro League in London. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Uzbekistan in Houston, US. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that in a changing global landscape, BRICS has a vital role in deepening security cooperation and addressing shared challenges from terrorism and cyber security to emerging technologies. Prime Minister Modi met national security advisors and senior security officials of BRICS countries, that is Brazil, Russia, India, China and South Africa, in New Delhi this evening. In a social media post, he also highlighted that India's BRICS chairmanship will seek to advance practical cooperation, support the priorities of the Global South, and contribute to a safer, more secure, and inclusive world. Prime Minister Narendra Modi has stressed on Nagrik Devo Bhava and urged officers to keep citizens at the center of governance. Interacting with 183 officer trainees of IAS 2024 batch who have been attached as assistant secretaries in various ministries and departments in New Delhi today, Mr. Modi called upon young civil servants to lead India's journey towards Viksit Bharat at 2047. The Prime Minister urged the young civil servants to dedicate themselves to nation building with a strong sense of purpose, innovation and citizen-centric governance. The Prime Minister also highlighted the growing role of women in nation building, noting that more than 40% of the current batch comprises women officers. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today said that the government is making advanced preparations for Kharif season to help farmers deal with the possible impact of a weak monsoon caused by El Nino. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Chauhan said that the country had so far seen around 43%

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: एलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे से को लेकर अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: जहाँ 102.6 FM की लहरों पर सवार हैं आप इस वक्त। मैं हूँ आपके साथ खुर्शीद। प्रोग्राम शुरू हो चुका है आपका अपना पसंदीदा जिसका नाम है रंगी महफिल, जहाँ अल्फाज सिर्फ कही नहीं जाते महसूस किए जाते हैं। गजल सिर्फ शायरी नहीं है, ये दिल का खाम दिल की खामोश जुबान है। और सब कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें हम दुनिया से छिपा लेते हैं, मगर एक शेर उन्हें बड़ी नज़ाकत से बयां करता है। कभी मोहब्बत का जिक्र, कभी जुदाई का दर्द, कभी रूह की तड़प, कभी खुदा से गुफ्तगू। गज़ल इन तमाम जज्बात का खूबसूरत आईना है। आज की इस महफिल में हम कुछ ऐसे ही नगमे सुनेंगे या गज़लें सुनेंगे जो दिल के दरवाजे पर दस्तक देंगे और शायद रूह के किसी बंद झुरे खुए को भी खोल जाएं। आइए शुरुआत करते हैं एक गज़ल के साथ, और इस वक्त मैं हूँ आपके साथ आपका अपना रेडियो दोस्त खुर्शीद।

कभी आपने महसूस किया है कि इंसान की सबसे बड़ी तन्हाई भीड़ में नहीं बल्कि अपने ही दिल के भीतर होती है। बाहर से सब कुछ मुकम्मल दिखाई देता है मगर अंदर कहीं कोई खालीपन, कोई अधूरापन चुपचाप बैठा रहता है। शायद इसीलिए सूफी संत कहा करते थे कि इंसान सारी दुनिया में सुकून तलाशता है जबकि उसका असली ठिकाना उसके अपने दिल के अंदर होता है। जब दिल साफ हो, नियत पाक हो, रूह मुतमईन हो तो छोटी छोटी चीज़ों में भी खुदा की रहमत दिखाई देती है। गजलें भी हमें इसी सफ़र पर ले जाती हैं, जाहिर से बातिन तक, लफ्ज़ों से एहसास तक और एहसास से रूह तक।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात

도리갑샵 도리감기밭 रेनबो की सौगात हर रोज जुड़िए हमारे साथ गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर ऑलवेज वेयर एवर यू आर 102.6 आपके लिए

जवाब का जॉइनिंग आर इनबल चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 एफएम पर। मैं हूं आपके साथ आपका अपना रेडियो दोस्त खुर्शीद। प्रोग्राम है रंगे महफिल। ज़िंदगी दरअसल यादों, मुलाकातों और दुआओं का एक लंबा सफ़र है। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जैसे कोई खूबसूरत मौसम हो, वो ज़्यादा देर नहीं ठहरते मगर उनकी खुशबू बरसों तक हमारे साथ रहती है। रूहानी लोग कहते हैं कि हर मुलाकात का एक मकसद होता है, कोई हमें सबक दे जाता है और कोई मोहब्बत लेकर देकर जाता है, और कोई सिर्फ और सिर्फ एक एहसास देकर कि दुनिया में अभी भी खुलूस बाकी है। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में अगर हम थोड़ा सा ठहर कर अपने भीतर झांकें तो शायद महसूस होगा कि हमें दौलत से ज़्यादा सुकून की ज़रूरत है, और सुकून अक्सर किसी अच्छी किताब, किसी सच्ची दुआ या फिर किसी उम्दा गज़ल से मिल सकती है या फिर किसी के कलाम से भी मिल सकती है। बहरहाल हमारे पास एक कलाम भेजा है मनीष झा ने गाज़ियाबाद से, और कहते हैं कि वक्त की धूप से घबराकर सफ़र छोड़ा नहीं करते, वक्त की धूप से घबराकर सफ़र छोड़ा नहीं करते, मुसाफिर वही हैं जो आंधियों में भी राह बना लेते हैं। और आगे कहते हैं कि हर ठोकर एक नई तालीम दे जाती है, हर गिरना इंसान को भी मजबूत बना देता है, मंजिलें अक्सर उन्हीं के कदम चूमती हैं जो हालात से नहीं अपने हौसलों से चलते हैं। बहरहाल बहुत खूब बात कही आपने, और यकीन ये जो बात है बड़ी खूबसूरत है, और ख़ूबसूरत हमारा अगला कलाम भी है जो मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ और जगजीत साहब की आवाज़ में है तो जाहिर सी बात है बेहद मखमली आवाज़ में जब आप सुनेंगे चीज़ें तो आपको यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। आइए सुनते हैं ये कलाम।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी के रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 एफएम पर। खुर्शीद आपके साथ है प्रोग्राम रंगे महफिल में। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां बहुत सारे सवाल होते हैं मगर जवाब कहीं दिखाई नहीं देता। हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खामोश तलाश जो है वो जारी रहती है। तलाश सुकून की, अपनेपन की और शायद अपने असली वजूद की। कहते हैं कि इंसान जब दुनिया की आवाजों से थोड़ा दूर होता है ना, तब उसे अपने दिल की आवाज सुनाई देती है और दिल की यही आवाज अक्सर हमें उस रास्ते पर ले जाती है जहां मोहब्बत सब्र शुक्र का एक साथ मिलते हैं। गजलें भी इसी तरह के हमारी जिंदगी में हम सफर होती हैं, वो हमें बाहर की दुनिया से उठाकर भीतर की दुनिया में ले जाती हैं, यानी सुकून की दुनिया में ले जाती हैं। ये खूबसूरत कलाम आप तक पहुंचा रहा हूं और इसे जरा आंखें बंद करके महसूस करके देखिए।

कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता, ना कोई वादा ना कोई दावा, मगर फिर भी वो दिल के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। कभी किसी की दुआ बनकर तो कभी किसी की याद बनकर तो कभी किसी अधूरी कहानी की तरह वो हमारी ज़िंदगी में आ ही जाते हैं। वक्त गुजर जाता है, मौसम बदल जाते हैं, मगर कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो उम्र भर ताज़ा रहते हैं। शायद मोहब्बत की असली पहचान भी यही है कि वो मौजूद ना होकर भी महसूस होती है। रंग में फिर आप सुन रहे हैं 102.6 एफएम लहरों पर, मैं हूं आपके साथ खुर्शीद। अगला कलाम आपकी नजर

जी हाँ साहब, आकाशवाणी का रेनबो चैनल आपने ट्यून किया है 102.6 FM की लहरों पर। मैं हूँ आपके साथ खुर्शीद। हम अक्सर खुशी की तलाश में बहुत दूर निकल जाते हैं, जबकि सुकून हमारे बेहद करीब होता है। कभी सुबह की पहली किरण में, कभी किसी बुज़ुर्ग की दुआ में, और कभी माँ की आवाज़ में, और कभी किसी गज़ल के एक मसरे में हमें सुकून मिल जाता है। रूह की ग़िज़ा सिर्फ रोटी या दौलत नहीं होती, बल्कि अच्छे ख्याल, नेक इरादे और खूबसूरत अल्फाज होते हैं। शायद इसी वजह से कुछ गज़लें सुनते ही ऐसा महसूस होता है जैसे कोई हमारे दिल का हाल हमसे बेहतर जानता हो। तो आइए कुछ

0: दुनिया के हलचल से दूर इस खूबसूरत गजल के साथ अपने दिल की आवाज सुने।
1: गजल के इस दौर को हम गजल वेव कह सकते हैं। इस दौर में कई नई नई आवाजें आईं, इनमें से पंकज उदास काफी मकबूल हुए। उनकी सिलेक्शन और गायकी में सादगी और कंपोजिशन में आम लोगों को अट्रैक्ट करने का एक अजीब सा चार्म है।

आज की इस महफिल में हमने मोहब्बत की बातें की, तन्हाई की बातें की, बल्कि तन्हाई को महसूस भी किया और यादों की गलियों से गुजरे और रूह के कुछ दरवाज़ों पर दस्तक भी दी। शायद गज़ल की सबसे बड़ी खूबी है कि वो हमें अपने हमारे अपने आप से मिलवाती है। जब अल्फाज दिल से निकलते हैं तो सीधे दिल तक पहुँचते हैं, और जब दिल में सच्चाई हो तो हर शेर एक दुआ बन जाता है। उम्मीद है कि आज की इस महफिल ने आपके दिल को थोड़ा सुकून ज़रूर दिया होगा। बहरहाल अब इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मिलने आऊँगा, बहुत जल्द मुलाकात होगी। फ़िलहाल इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम

0: एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण तथा पूर्व न्यायाधीश KT थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभावों से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: जम्मू कश्मीर में संसद की विदेश मामलों संबंधी स्थायी समिति ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की। शशि थरूर की अध्यक्षता वाली समिति ने सीमा प्रबंधन, सुरक्षा तैयारियों और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति में सुधार की जानकारी दी, जबकि मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और जन सेवाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया खाड़ी क्षेत्र के तीन देशों के दौरे के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। श्री रूबिया का ये दौरा अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई हालिया कूटनीतिक वार्ता के बाद हो रहा है। इस दौरान वे संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन के नेताओं से मुलाकात करेंगे। बैठकों में क्षेत्रीय सुरक्षा और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा होने की संभावना है। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। पाकिस्तान के अहमद नदीम ने 3 गोल दागे, लेकिन भारतीय टीम ने बढ़त बनाए रखी और मैच अपने नाम कर लिया।

सुरक्षा और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा होने की संभावना है। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजिंदर सिंह ने गोल किए। पाकिस्तान के अहमद नदीम ने 3 गोल दागे, लेकिन भारतीय टीम ने बढ़त बनाए रखी और मैच अपने नाम कर लिया। मौसम अगले 2 से 3 दिन तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is

0: आकाशवाणी
1: 12:05 और 49 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है जीरो आवर शो। मैं हूं एसएम शरीफ, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: कैमरा नहीं है मेरे पास, वरना एक गजब का फोटोग्राफ मिल जाता।
1: जी मैं
2: पानी की चोर तो बर्दाश्त कर गया, लेकिन ये बाल्टी फेंक कर मारी तो।
1: मुझे माफ कर दीजिएगा, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको अपने नौकर समझी थी।
2: जी
1: जी मेरा मतलब है, मुझे अपने नौकर पे बहुत गुस्सा आया था
2: और पानी मुझ पे डाल दिया, वो भी इस कड़ाके की सर्दी में।
1: अंदर आइए ना।
2: जी आपका गुस्सा उतर गया?
1: मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। लाइए आपके कपड़े दे दीजिए, मैं सुखा देती हूँ। शर्ट भी दे दीजिए।
2: जी
1: ठहरिए,

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अली थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित

0: अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: रिजर्व बैंक ने ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम TREDS के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए वित्तीय सुविधाओं को आसान बनाना है। TREDS एक ऑनलाइन मंच है जहां छोटे उद्यम अपने बिलों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से नकदी में बदल सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों से कार्बन उत्सर्जन, जल उपयोग और भूमि उपयोग संबंधी जानकारियां सार्वजनिक करने का आह्वान किया है। लंदन क्लाइमेट एक्शन वीक में संबोधित करते हुए श्री गुटेरेस ने AI पर्यावरणीय पारदर्शिता पहल का प्रस्ताव रखा। उन्होंने वर्ष 2030 तक AI डेटा केंद्रों को पवन और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित करने की अपील की। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम CB जॉर्ज ने लग्जमबर्ग के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जॉर्ज ने कहा कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे साझेदारी संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी।
1: 1:05 और 27 सेकंड हुए हैं, सुनते हैं कार्यक्रम सुहानी रात।

सगरे गाँव की गोरिया पुछू पुछू मैं छोड़ रहा।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अली थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश KT थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी देशों के 3 देशों के दौरे के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। श्री रूबियो का यह दौरा अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई हालिया कूटनीतिक वार्ता के बाद हो रहा है। इस दौरान वे संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन के नेताओं से मुलाकात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी से कार्बन उत्सर्जन, जल उपयोग और भूमि उपयोग संबंधी जानकारी सार्वजनिक करने का आह्वान किया है। लंदन क्लाइमेट एक्शन वीक में संबोधित करते हुए श्री गुटेरेस ने AI पर्यावरणीय पारदर्शिता पहल का प्रस्ताव रखा। उन्होंने वर्ष 2030 तक AI डेटा केंद्रों को पवन और सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित करने की अपील भी की। फीफा विश्व कप 2026 में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम को जीत हासिल कराई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही रोनाल्डो ने विश्व कप इतिहास में नया कीर्तिमान भी स्थापित किया। वो 6 अलग अलग विश्व कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं ग्रुप एल मुकाबले में इंग्लैंड और घाना के बीच मैच जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कल तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चलीं, जिससे तापमान में गिरावट आई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: 2:05 और 35 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं प्रोग्राम भुलाए ना बने।

के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो आयकर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अली थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण तथा पूर्व न्यायाधीश KT थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून से संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, IT, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। लखनऊ

में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट मिशन मोड पर कराया जाए। रिजर्व बैंक ने ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम TREDS के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए वित्तीय सुविधाओं को आसान बनाना है। TREDS एक ऑनलाइन मंच है जहां छोटे उद्यम अपने बिलों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से नकदी में बदल सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी क्षेत्र के 3 देशों के दौरे के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। श्री रूबियो का ये दौरा अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई हालिया कूटनीतिक वार्ता के बाद हो रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कल तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी।
1: 3:05 और 35 सेकंड हुए हैं। प्रोग्राम है मिड नाइट मेलोडीज।

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम से।

0: खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपको बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
2: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
3: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
2: साइबर

0: या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने तथा आतंकवाद और साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की 16वीं बैठक नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, IT, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। रिजर्व बैंक ने ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम TREDS के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME के लिए वित्तीय सुविधाओं को आसान बनाना है। TREDS एक ऑनलाइन मंच है जहां छोटे उद्यम अपने बिलों को बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से नकदी में बदल सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो खाड़ी देशों के 3 देशों के दौरे के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं। श्री रूबियो का ये दौरा अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई हालिया कूटनीतिक वार्ता के बाद हो रहा है। फीफा विश्व कप 2026 में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम को जीत

की अहम भूमिका दिलाई, उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं ग्रुप एल मुकाबले में इंग्लैंड और घाना के बीच मैच जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: 4:05 और 33 सेकंड हुए हैं। शुरू करते हैं प्रोग्राम सारे गामा।

0: मेम साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप? क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3 4 ला।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं 8:00 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात।

मर वाला, मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त।